0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावारा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। आप सब हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु घणेमान स्वागत कर रहा हूं हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के किसान भाई बहन आप सब जानो सो कि हमें कार्यक्रम खेतीवाड़ी में घना का निवात कर रहा हूँ। अपने प्रकृति तकी जुड़ी हरते आप अपना क्षेत्र में नवी नवी चीजें ने अपनावी ने घना का नु ध्यान राखी ने अपनी खेती ने असल तरीका तकी करी सको। तो आज भी किसान भाई बहन अमे आप तकी बात करवा वा रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती ने आप हरते अपनावी सको आनु हूँ महत्व है ने आना कया कया सिद्धांत है जेना ने ध्यान में रखते तके अगर आपने प्राकृतिक खेती करा हो तो इनमें अपने अच्छो मुनाफो मिले है ने अपनी जे भूमि है अपनी जे मिट्टी है इनी उर्वरा जे क्षमता है ई भी वधे है। तो कार्यक्रम में किसान भाई बहन अणा विषय माते अपने वात घणा कनी करंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले अपने हामरी लागी मोरे करा अपनी वाते। तो किसान भाई बहन आप हमर तो रो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जो गोबर है, खाद है, कंपोस्ट है, जीवाणु खाद है,
1: जी जी,
0: फसल के जो अवशेष है जो बचे हुए रह जाते हैं वो, और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिया जाता है।
1: जी जी,
0: इसी को ही प्राकृतिक खेती अपन बोलते हैं। मतलब प्राकृतिक खेती में उपलब्ध जो जीवाणु है,
1: जी जी,
0: मित्र कीट है, और जैविक कीटनाशक द्वारा जो फसल को हानिकारक जीवाणु से बचाया जाता है,
1: जी जी बिल्कुल,
0: उसी को प्राकृतिक खेती अपन बोलते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति में जो भी हमें उपलब्ध चीजें हैं उसको हम संभाल कर रखें और उसको कैसे हम काम में ले सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: उसी को हम प्राकृतिक खेती,
0: उसी को प्राकृतिक खेती बोलते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: इसके अंदर अलग से कोई जैसे रासायनिक डीएपी यूरिया कीटनाशक ऐसा कभी प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं, यही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या महत्व है।
0: बिल्कुल, प्राकृतिक खेती का महत्व ये है कि देखो, ये कि इसमें ऐसा होता है कि काफी वर्षों से खेती में नुकसान अपन को देखने को मिल रहा है।
1: जी जी,
0: उसका मुख्य जो कारण है ना कि हानिकारक कीटनाशक एवं ये रासायनिक खादों का उपयोग, इससे क्या किसान की लागत बढ़ जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: पहला तो वो कारण है कि भी अपने क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात यह कि भूमि के जो प्राकृतिक स्वरूप में जो भी बदलाव हो रहा है, इससे काफी नुकसान, मतलब अपन को ये लग रहा है कि काफी नुकसान भरे हो सकता है।
1: जी जी,
0: जो अभी जलवायु परिवर्तन अपन को देखने को मिल रहा है, जमीन के अंदर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सब चीज रासायनिक खेती से प्रकृति में और मनुष्य में स्वास्थ्य को काफी गिरावट कर रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब अपन को पता है कि 30-40 साल पहले जो बीमारियां नहीं सुनी थी, आज नई नई बीमारियां आ रही है, कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: तो ये इसीलिए प्राकृतिक खेती अपन को जरूरी है यहाँ पर।
1: जी बिल्कुल सर, हम कह सकते हैं हमारे किसान भाई बहनों से कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमारी खेती में हमें बहुत सारे लाभ पहुँचते हैं, साथ ही हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता
0: है। वो अच्छा रहता है।
1: जैसा कि सर आपने बताया कि अगर हमारे किसान भाई बहन रासायनिक खेती करते हैं तो इससे हमारा जो वायुमंडल है उस पर भी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते
0: देखने
1: हैं
0: को मिलता है।
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ सकते हैं और उसे कर कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं।
0: और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसके अंदर जो किसान कमाता है,
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें आधा हिस्सा तो मतलब यूं समझ लो कि रासायनिक खाद और दवाई में चला जाता है।
1: जी बिल्कुल सर,
0: मतलब उसको किसान को कुछ बेनिफिट तो मिलता ही नहीं है। और प्राकृतिक खेती होगी तो लगभग पूरे पूरा उसके घर पे आमदनी
1: आएगी। जी बिल्कुल सर,
0: तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसीलिए अपन को प्राकृतिक खेती की आवश्यकता यहाँ पर अपन को जरूरी है कि भी किसान का जो ज्यादा मुनाफा है, उसका जो बेनिफिट है वो इससे ही अपन को मिल रहा है। इसके साथ क्या है कि जैसे अपन और चीज अपन देखते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो उपयोग है उसमें मिट्टी की उर्वरता क्षमता काफी कम हो गई है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। और हम देखते हैं और हम यही बात करते हैं हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो हम वही हमारे किसान भाई बहनों को कहते हैं कि गेहूं की खेती के बाद वो एक दलहनी फसल करें,
0: बिल्कुल,
1: जिससे उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़े। तो वही अगर हमारे किसान भाई बहन अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें प्राकृतिक खेती को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाना
0: होगा,
1: जिससे उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जब भी वो किसी चीज की फसल कर रहे हैं तो उसका उत्पादन उन्हें अच्छी तरीके से मिल पाएगा।
0: बिल्कुल, इसीलिए अपन को इसकी ज्यादा आवश्यकता।
1: जी बिल्कुल। तो सर, हम आपसे यहीं पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो उसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं।
0: हाँ, प्राकृतिक खेती के जो अपन सिद्धांत की बात करें है ना, तो इसके मुख्यतः चार सिद्धांत है।
1: जी बिल्कुल।
0: पहला सिद्धांत यदि अपन देखें तो खेतों में कोई जुताई नहीं करना और न ही मिट्टी पलटना। प्राकृतिक खेती में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े जो ट्रैक्टर से हल चलाते हैं,
1: जी जी,
0: और इसमें प्लॉइंग करते हैं, तो ये प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का ज्यादा ट्रैक्टर से औजारों से कोई काम नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: उससे क्या, धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ के प्रवेश करके केचुओं और छोटे जो प्राणियों सूक्ष्म जीवाणु है उसके जरिए वो ले लेती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये प्राकृतिक खेती का पहला सिद्धांत है। यदि दूसरा सिद्धांत की अपन बात करें तो किसी भी तरह की अपन तैयार खाद की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाए, मतलब जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि यूरिया डीएपी जो मानव ने बनाई हुआ खाद है, पेस्टिसाइड, इसका प्राकृतिक खेती में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। यदि अपन आगे तीसरा सिद्धांत की बात करें कि निराई गुड़ाई न की जाए, न तो हल से न कोई औजार से, मतलब प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक रूप से ही उसको इसका उपयोग होना चाहिए। खरपतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने का तथा जैव बिरादरी में संतुलन स्थापित करने का प्रमुख भूमिका निभाता है, खास करके इसके अंदर जो खरपतवार है वो उसका खाद बनाने का महत्वपूर्ण काम करता है
1: जी बिल्कुल।
0: ये बुनियादी सिद्धांत यही है कि खरपतवार को भी अपन दवाइयों से उससे जो नष्ट कर देते हैं के अंदर प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का दवाई से खरपतवार को नष्ट नहीं करना है
1: जी बिल्कुल।
0: ये उसका तीसरा सिद्धांत है। यदि अपन बात करें चौथे सिद्धांत की तो रासायनों पर बिल्कुल निर्भर न करना है। रासायनिक जो भी दवाई है खाद है इसके ऊपर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए है ना। तो ये उसका चार सिद्धांत की अपन जो बात करते हैं
1: जी बिल्कुल सर आपने बहुत सही कहा। ये जो चार सिद्धांत हैं वो अगर हमारे किसान भाई बहन ध्यान में रख लेंगे तो उनका जो प्राकृतिक खेती की जो आवश्यकता महत्व को आज हम महसूस कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी किसान भाई बहन रासायनिक खेती के ऊपर आश्रित रहता है तो उससे उनका उत्पादन कम होता है, साथ ही उनकी मिट्टी जो है वो बंजर बन जाती है,
0: बिल्कुल
1: उसमें कोई और चीज का उत्पादन हो ही नहीं पाता है। और वहीं अगर हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं।
0: बिल्कुल बहुत सारे फायदे हैं
1: जी बिल्कुल। तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के क्या क्या फायदे हो सकते हैं।
0: बिल्कुल प्राकृतिक खेती के अपन यदि लाभ की बात करें तो वो अपन अलग अलग लाभ अपन बता सकते हैं
1: जी जी।
0: क्योंकि किसान की दृष्टि से क्या लाभ है, यदि किसान की दृष्टि से अपन देखें तो कि उसकी भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है
1: जी बिल्कुल।
0: किसान की सिंचाई के अंतराल में वृद्धि हो जाती है। सिंचाई जो रासायनिक खाद डालोगे तो आपको बार बार पानी
1: डालना पड़ेगा जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: इसका अंतराल आप में वृद्धि हो सकती है, सिंचाई कम लागत लगेगी
1: जी जी।
0: रासायनिक खाद पर निर्भरता बिल्कुल कम हो जाएगी यानी कि लागत कम होगी किसान की
1: जी बिल्कुल।
0: मेन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी प्राकृतिक खेती में, और बाजार में जैविक उत्पादों जो की मांग बढ़ रही है खास करके अपन सब जानते हैं आजकल ऑर्गेनिक जो अनाज की बात करते हैं प्राकृतिक अनाज की बात करते हैं तो इसके अंदर मांग बढ़ रही है तो इसका उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी और किसान की आय में मैक्सिमम अपन देखते हैं तो किसान की आय में ज्यादा वृद्धि हो सकती है
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो ये तो किसान की दृष्टि से लाभ हुआ, लेकिन अपन देखें कि मिट्टी की दृष्टि से क्या लाभ हो रहा है
1: जी बिल्कुल।
0: तो मिट्टी की दृष्टि से अपन देखें तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है, और अपन जानते हैं कि रासायनिक खाद दवाई का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ती है, जमीन कठोर हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है
1: जी बिल्कुल।
0: जमीन मतलब एकदम आगे जाके कुछ भी नहीं पैदा होता है। तो जैविक खाद से एक तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, और भूमि से पानी का बाष्पीकरण कम हो जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: मतलब जो पानी उड़ जाता है
1: जी बिल्कुल
0: वो प्राकृतिक खेती में बिल्कुल पानी नहीं उड़ता है और उसके अंदर नमी बनी रहती है
1: जी बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती के किसान भाई बहनों को ढेर सारे फायदे हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज अपन देख सकते हैं भी पर्यावरण दृष्टि से भी बेनिफिट है। पर्यावरण दृष्टि से भी अपन देखें तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पानी की जल स्तर अपन बढ़ जाता है, मिट्टी खाद पदार्थ जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण है अपन देखते हैं कि भी अलग अलग जगह जो प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी जी।
0: मिट्टी के अंदर खाद के अंदर जमीन के अंदर तो वो प्रदूषण में कमी आ जाती है
1: जी बिल्कुल सर। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो इससे हमारा वातावरण भी सही रहता है, हमारे किसान भाई बहनों की आमदनी भी बढ़ जाती है, साथ ही उनकी जो मिट्टी है वो भी सही रहती है।
0: बिल्कुल मिट्टी सही रहती है, उसका जो भी फल है फल एकदम बिना दवाई वाला होगा तो एकदम बीमारी नहीं लगेगी
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये सब चीज प्राकृतिक खेती में बहुत सारा ढेर सारा फायदा है, मन को स्वस्थ रखता है, जमीन स्वस्थ रहती है और प्रकृति स्वस्थ रहती है, प्रकृति भी अपने आप में उसका संतुलन बना रहता है। बाकी अपन देखते हैं कि भी जलवायु परिवर्तन देख बार बार अपन सुनते हैं कि भी बारिश एक साथ आ जाती है, अनियमित बारिश आ जाती है, तो ये सभी काम जो है वो रासायनिक खाद और दवाई से है, तो प्राकृतिक खेती अपनाना बहुत जरूरी है
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती कर सकते हैं जिससे उन्हें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, तो सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सेम की किसान भाई बहन अवड़े अपने वैस में पटेल सर जुड़े तक कहता निर्णय अपने ने घनी असल तरीका तो ये बताड़ियो है कि आप प्राकृतिक खेती नो हूँ महत्व है हरते आ अपने बल्ले घनी जरूरी है, क्योंकि अपने देख हाँ कि अवड़े नो जो टाइम है इनमें घना जे मनक है ई जैविक चीजें ने पसंद करे है, तो एवं में आपड़े ने जैविक खेती करूँ घणु जरूरी थी जाए, आपने प्रकृति में जे चीजें हैं जे खुद थकी थाए हैं ई करवू आपड़े बल्ले घणु जरूरी है, क्योंकि आपड़े देखा हाँ कि घणा एवं जे मनक है ई खेतर में रासायनिक चीजों नो उपयोग करीने जल्दी तकी ई चीजें करवा जाए हैं, એવા મેં ચીજે આપણને જલ્દી તો મળી જાય હે, પણ એક ટાઈમ એવું આવે હે જઈ વગત આપણને એનમે ઘણું નુકસાન થાય હે. આપણી જે મિટ્ટી હે ઈ બંજર થઈ જા ને આપણે કઈ બી અગર ઉત્પાદન કરવા જ તો એનમે આપણને હોઝે ઉત્પાદન નથી મળતું. ને એને સાથે આપણે જે રાસાયણિક ખેતી કરો હ તો એનમે આપણને બીજ લાવવાનું, રાસાયણિક જે ચીજે આવે ઈ લાવવા મેં ઘણો પૈસો લાગી જા, ને એવા મેં આપણે ખેતી કરો ને જે ઉત્પાદન મળે એનમે આપણે ઉપર પેટે કારે નથી આવી શકતા. ને અગર આપણે જેવી ખેતી કરો હ તો એનમે આપણું કાંઈ નથી લાગતું. આપણે જે પ્રકૃતિ મેં જે બી ચીજે હે એને આપણે કામ મેં લ હ તો એનમે આપણે વધારે લાગત નથી લાગતી, ને આપણે જે ખેતી કરી રહ એનમે આપણને ઉત્પાદન બી ઓછું મળી જા, ને આપણી જે આર્થિક સ્થિતિ હે એ બી મજબૂત થઈ જા. તો કિસાન ભાઈ બુન વાતે તો આપણા કાર્યક્રમ મેં આપણે ઘણા કની થઈ ગઈ હે, ને હવે ટાઈમ બી થઈ રહ્યું હે કાર્યક્રમ તો કે સૂટો પડવાનું. તો આપણા સૂટો પડ એને પહેલા આપણા હામરી લાગીત મોરે પડા સૂટા.

किसान भाई बोन अणसगी थाते अमे कार्यक्रम खेतीवाड़ी तकी पड़ सुट ने आशा कर हूँ कि आज कार्यक्रम में अमे जी भी बातें करी ई आपने गमी होंगा। तो किसान भाई बोन आपने अमारो आज नो आ कार्यक्रम केव लग्यू एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमारे अणा पता माते। हमारू पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिनकोड नंबर है 327001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। हमारू फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नवा विषय ने हाते तारू दी पड़ा सूट ए आवजू। राम राम राम राम।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाव पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थी जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपने करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: सेहत नु राज हूँ है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह होवे सेहत है असली धन आपरो आज जीवन नो सहारो है आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम हाजिर हो गए हैं एक ऐसे ही नए विषय के साथ में। तो श्रोता साथियों आज हमारा जो नाटक रहने वाला है उसका विषय है नकल नहीं अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। श्रोता साथियों आज मैं आपसे एक ऐसा ही सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर शायद ही हर विद्यार्थी, हर माता पिता और हर शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोता साथियों अगर सफलता बिना मेहनत के मिल जाए तो क्या वह सचमुच सफलता कहलाएगी? आज के समय में अच्छे अंक लाने की होड़ बढ़ती जा रही है। कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह अच्छे नंबर आ जाएं। कुछ बच्चे घंटों मेहनत करते हैं जबकि कुछ बच्चे हैं वो शॉर्टकट खोजने लगते हैं। धीरे धीरे श्रोता साथियों यही शॉर्टकट नकल की आदत में बदल जाता है। शायद ही उस समय नकल ही वो आसान रास्ता लगता है लेकिन वह केवल उत्तर पुस्तिका भरती है, जीवन नहीं बनाती। नकल से अंक मिल सकते हैं श्रोता साथियों लेकिन ज्ञान नहीं। प्रमाण पत्र मिल सकता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं। और सबसे बड़ी बात, नकल हमें कुछ समय के लिए दूसरों से आगे दिखा सकती है लेकिन जीवन की असली परीक्षा में पीछे छोड़ देती है। दूसरी ओर श्रोता साथियों मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन वह रास्ता हमें आत्मविश्वास, अनुभव और सम्मान देता है। जो बच्चा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना सीख जाता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह गिरता है, सीखता है, फिर उठता है और अंत तो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें जरूर रहेंगी लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाई विडिपाई चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चकरदुम चिकिचकचो

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष हेतु रूबरू कराई चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं नकल नहीं अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि आज के समय में अच्छे अंक लाने की होड़ है वो बढ़ती जा रही है। कई बच्चे सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह अच्छे अंक आ जाएं। कुछ बच्चे हैं वो घंटों तक मेहनत करते हैं, जबकि कुछ बच्चे शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे श्रोता साथियों यही शॉर्टकट नकल की आदत बन जाता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि दूसरी ओर मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता है वो हमें आत्मविश्वास, अनुभव और सम्मान देता है। कहना चाहूंगी कि जो बच्चा मेहनत पर भरोसा करना सीख जाता है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। वह अपने जीवन में गिरता है, सीखता है, फिर उठता है और आखिरकार अंत में जाकर अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। तो आइए श्रोता साथियों, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ में सुनते हैं कार्यक्रम का यह नाटक।
1: अवनी, जितना पढ़ती हूँ उतना ही लगता है कि कुछ याद नहीं रहा। कल की परीक्षा सोच कर तो मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: अरे त्रिशा, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण मेहनत छोड़ देना गलत है। चलो, जिन प्रश्नों में परेशानी है उन्हें फिर से देखते हैं।
1: अब क्या होगा, पूरी किताब तो एक रात में याद तो नहीं हो सकती ना?
2: हाँ, पूरी किताब नहीं, लेकिन जरूरी बातें समझी जा सकती है। याद करने से ज्यादा समझना जरूरी है।
1: अरे सच बताऊं तुम्हें, मेरे मन में एक बात आ रही है।
2: वो क्या?
1: अगर कल थोड़ी सी नकल कर लूं, तो शायद अच्छे अंक आ जाए।
2: त्रिशा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि नकल से मिली सफलता तुम्हें खुशी देगी?
1: नहीं, पर अवनी कम से कम अच्छे नंबर तो मिल जाएंगे।
2: अरे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या?
1: मतलब?
2: मान लो इस बार अच्छे अंक आ भी गए, फिर अगली परीक्षा, फिर अगली कक्षा और आगे की पढ़ाई, हर बार नकल करोगी क्या? त्रिशा, नकल एक ऐसी आदत है जो शुरुआत में आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही भुला देती है।
1: लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी कम अंक आए तो?
2: कम अंक सुधारे जा सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी चली गई, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा।
1: तुम्हारी बात तो सही है। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता?
2: लगता है, हर परीक्षा से पहले लगता है, लेकिन मैं खुद से एक बात कहती हूँ, जितना सीखा है उतना ही लिखूंगी, गलत होगा तो और सीखूंगी, लेकिन झूठी सफलता नहीं चाहूंगी।
1: काश मेरे अंदर भी इतना आत्मविश्वास होता।
2: आत्मविश्वास कोई जन्म से लेकर नहीं आता है त्रिशा, यह हर दिन की मेहनत से बनता है।
1: तुम्हें कैसे इतना भरोसा है अपनी मेहनत पर?
2: भरोसा इसलिए है क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं, मेहनत का परिणाम देर से मिलता है लेकिन वह हमेशा अपना होता है, और नकल का परिणाम जल्दी मिल जाता है लेकिन वह कभी भी अपना नहीं होता।
1: आज पहली बार कोई मुझे अंकों से ज्यादा ईमानदारी की कीमत समझा रहा है।
2: हाँ, अंक जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। लोग कुछ समय बाद नंबरों को भूल जाते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा याद रहता है।
1: शायद अवनी मैं गलत सोच रही थी।
2: हाँ, और इस गलत सोच का बदल जाना ही सबसे बड़ी जीत है।
1: अवनी, रात में मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आई, बार बार यही डर लग रहा था कि अगर प्रश्न कठिन आ गए तो क्या होगा।
2: त्रिशा, डरो मत, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, जितना पढ़ा है उतना खुद पर विश्वास भी रखो।
1: लेकिन अवनी, मेरे मन में अभी भी वही चिंता है, अगर मैं अच्छे अंक नहीं ला पाई तो सब क्या कहेंगे।
2: अरे तुम हमेशा ये सोचती हो कि लोग क्या कहेंगे, कभी ये सोचो कि तुम्हारा अपना मन क्या कहेगा। अगर तुम ईमानदारी से परीक्षा देकर बाहर निकलोगी तो चाहे कम अंक ही क्यों ना आए, तुम्हारा सिर ऊंचा रहेगा।
1: बात तो तुम्हारी सही है।
2: अरे त्रिशा, ये क्या है?
1: कल रात मैंने कुछ उत्तर लिखे थे, सोचा था कि अगर भूल गई तो देख लूंगी।
2: तो अभी भी तुम दो रास्तों के बारे में सोच रही हो?
1: दो रास्ते?
2: हाँ, दो रास्ते। पहला रास्ता ये कि इस कागज के भरोसे परीक्षा दोगी, और दूसरा रास्ता ये कि अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के भरोसे परीक्षा दोगी। अब सोचो, फैसला तुम्हें ही करना है।
1: अगर मैं इसे फेंक दूं और प्रश्न कठिन आ गए
2: तो तुम उतना लिखोगे जितना तुम्हें आता है। लेकिन अगर ये कागज साथ लेकर गई और पकड़ी गई तो केवल परीक्षा नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी हार जाएगा।
1: अम्मी, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं प्रश्नों से नहीं अपने डर से हार रही हूँ।
2: हाँ त्रिशा, याद रखो, सबसे बड़ी जीत डर पर जीत होती है।
1: बस आज के बाद मैं कभी नकल नहीं करूँगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। अगर सफल हुई तो अपनी मेहनत से, और अगर असफल हुई तो अपनी गलती सुधार कर फिर से मेहनत करूंगी। लेकिन झूठी सफलता कभी नहीं चाहूंगी।
2: बिल्कुल, यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। याद रखना, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता त्रिशा। उसे या तो सफलता मिलती है या अनुभव, और दोनों ही जीवन में बहुत काम आते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अवनी तुम्हारा। तुमने मुझे उत्तर नहीं सिखाया, तुमने मुझे सही रास्ता चुनना सिखाया है।
2: हाँ, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता दिखाए।

0: तो त्रिशा, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा?
1: सच कहूं, कुछ प्रश्न बहुत अच्छे हुए, कुछ नहीं आए। लेकिन आज पहली बार मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मैंने आज अपनी मेहनत पर भरोसा किया है। जब एक दो कठिन प्रश्न आए तो एक पल के लिए लगा कि अगर वह पर्ची साथ होती तो शायद उत्तर लिख देती। लेकिन अगले पल मुझे तुम्हारी बात याद आ गई कि झूठी सफलता कभी सच्ची खुशी नहीं देती।
0: और फिर क्या हुआ?
1: फिर मैंने जितना आता था उतना लिखा। कुछ उत्तर पूरे थे, कुछ अधूरे, लेकिन हर शब्द मेरा अपना था, किसी और का नहीं।
0: बिल्कुल त्रिशा, मुझे तुम पर गर्व है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
1: आज मुझे समझ में आया अवनी कि परीक्षा केवल किताबों की नहीं होती, हमारे चरित्र की भी होती है।
0: बिल्कुल, कई बार हमें जीवन ऐसे मोड़ पर भी लाकर खड़ा कर देता है जहाँ सही और आसान में से हमें किसी एक को चुनना पड़ता है।
1: हाँ बिल्कुल, पहले मैं सोचती थी कि अच्छे अंक ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अगर अंक ईमानदारी से मिले तभी उनका मूल्य होता है।
0: बिल्कुल, याद रखो, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर परिणाम आज नहीं मिला तो कल तो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत से मिला तो आत्मविश्वास जीवन भर साथ रहता है।
1: और नकल?
0: नकल? नकल तो कुछ मिनटों की राहत दे सकती है, लेकिन वह सीखने की क्षमता को कमजोर कर देती है।
1: आज से मैं अपने छोटे भाई बहनों को समझाऊंगी कि उन्हें कभी भी शॉर्टकट अपनाना नहीं है, हमेशा पूरी मेहनत से अपना काम करना है।
0: बहुत अच्छा त्रिशा, जब एक बच्चा सही रास्ता चुनता है ना, तो वह अपने साथ कई बच्चों को भी प्रेरित करता है।
1: अवनी, धन्यवाद। अगर उस दिन तुम मुझे रोकती नहीं तो शायद मैं आज भी यही सोचती कि नकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मुझे अपने अंकों से ज्यादा अपने फैसले पर गर्व है।
0: और मुझे तुम पर, क्योंकि असली सफलता परीक्षा में नहीं अपने मन पर जीत हासिल करने में है।
1: आज मैं खुद से एक वादा करती हूँ कि मैं जीवन की हर परीक्षा अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने आत्मविश्वास के दम पर ही दूंगी।
0: हाँ, और यही वादा तुम्हें जीवन में सबसे आगे ले जाएगा। चलो अब घर चलते हैं।
1: चलो।
2: श्रोता साथियों, आज की कहानी केवल दो बच्चियों की नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी थी जो कभी न कभी सफलता और शॉर्टकट के बीच चुनाव करते हैं। नकल कभी भी ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकती, वह कुछ समय के लिए श्रोता साथियों अच्छे अंक दिला सकती है, लेकिन वह सोचने, समझने और आगे बढ़ने की क्षमता ही उसको कमजोर कर देती है। दूसरी ओर श्रोता साथियों, मेहनत का रास्ता कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही रास्ता आत्मविश्वास, सम्मान, सच्ची सफलता तक हमें पहुंचाता है। श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि हमें बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि गलती करना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब हम सीखना छोड़ देते हैं। यदि किसी परीक्षा में अंक कम आए तो उसे अपनी मेहनत बढ़ाने का अवसर समझें, न कि गलत रास्ता चुनने का कारण। श्रोता साथियों, माता पिता और शिक्षक भी बच्चों पर केवल अधिक अंक लाने का दबाव न डालें, उसकी ईमानदारी, प्रयास और सीखने की इच्छा की भी उतनी ही प्रशंसा करें। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनका मूल्य केवल अंकों से नहीं बल्कि उनके चरित्र से ही, तभी वे सही रास्ता चुनने का सांस रखते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, सच्ची सफलता वही है जिसमें मेहनत हो, ईमानदारी हो और आत्मविश्वास हो। जो बच्चा अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे किसी नकल, किसी शॉर्टकट और किसी गलत रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है श्रोता साथियों कि उसकी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जब वह वहां पहुंच जाएगा तो उसके कदमों में आत्मविश्वास होगा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होगी। तो आइए श्रोता साथियों, हम सभी आज ये संकल्प लें, नकल नहीं करेंगे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, गलत रास्तों से मिलने वाली आसान सफलता की बजाय सही रास्ते से मिलने वाली सच्ची सफलता को चुनेंगी और अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास की मजबूत नींव को खड़ा करेंगे। याद रखिए साथियों, मेहनत से लिखा हुआ हर उत्तर नकल से लिखे हुए पन्नों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अंक कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही भरोसा एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुंद एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुंद आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुंद आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं ये सुरक्षा है सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: साथियों लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़े बल्कि उसे अपनी ही यात्रा बना ले।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जीवन की राहों पर चलते हुए हम अक्सर अपने ध्यान को किसी एक लक्ष्य से बांध देते हैं। हमें लगता है कि सफलता केवल तभी मिलती है जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जीवन का सार केवल मंजिल में ही छिपा है? नहीं श्रोताओ, असल जीवन तो उस यात्रा में छिपा है जिसे हम ध्यान के साथ जीते हैं। इसीलिए कहा जाता है कशिश कि ध्यान को किसी लक्ष्य से मत जोड़िए, ध्यान को ही अपनी यात्रा बनाइए साथियों।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। अब बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि ध्यान को हमें किसी लक्ष्य से न जोड़कर बल्कि अपनी यात्रा बना लेनी है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि हमारा जीवन निरंतर प्रयासों, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ है। हम सभी अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। किसी को अपना करियर बनाना होता है तो किसी को बेहतर इंसान बनना होता है। साथ ही कभी कभी किसी को तो आर्थिक स्थिरता भी चाहिए होती है।
1: जी हाँ,
0: तो कोई जीवन में शांति चाहता है साथियों। लेकिन अक्सर हम लक्ष्य को इतना बड़ा बना देते हैं कि यात्रा का सौंदर्य ही हम भूल जाते हैं। लक्ष्य पर केंद्रित रहना अच्छा है साथियों, पर यदि ध्यान केवल परिणाम पर अटक जाए तो प्रक्रिया का आनंद खो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा जा सकता है कि ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़ें बल्कि उसे अपनी एक यात्रा ही बना लें।
1: बिल्कुल कशिश, ये विचार बहुत गहरा है, व्यापक है और आधुनिक जीवन की उलझनों को समझने का एक शांत, स्थिर और सच्चा समाधान है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें इसे विस्तार से समझना होगा। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो, ये बात गलत नहीं है साथियों, लेकिन अधूरी है।
0: जी,
1: क्योंकि लक्ष्य जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, जीवन स्वयं उससे कहीं बड़ा है। जब हम ध्यान को लक्ष्य से बांध देते हैं तो हम लक्ष्य पूरा होने तक खुद को स्थिर, तनावग्रस्त और दबाव में रखते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: यदि लक्ष्य पूरा हो गया हम खुश होते हैं, यदि पूरा न हुआ हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान को लक्ष्य से नहीं बल्कि कार्य से जोड़ दिया जाए तो जीवन एक निरंतर शांत, सुंदर यात्रा बन जाता है। लक्ष्य अंत है साथियों, ध्यान साधना है और साधना ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि लक्ष्य पर ज्यादा केंद्रित

0: ध्यान दुष्प्रभाव ला सकता है। जैसे कि दोस्तों, जब व्यक्ति केवल लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है तो उसके मन में बेचैनी, दबाव और लगातार तुलना बढ़ जाती है।
1: जी हाँ,
0: हर छोटी छोटी गलतियां उसे निराशा में डाल देती है, परिणाम पाने की जल्दी चिंता पैदा करती है और सफलता में देरी होने पर व्यक्ति खुद को असफल मानने लगता है। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्य केंद्रित सोच व्यक्ति की रचनात्मकता को सीमित कर देती है। वहीं अगर यात्रा केंद्रित ध्यान के महत्व को हम जाने तो जब ध्यान को लक्ष्य पर नहीं बल्कि यात्रा पर लगाया जाता है तो व्यक्ति सीखने, बढ़ने और अनुभवों को महसूस करने में सक्षम हो पाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे हम देखते हैं कि हर कदम एक उपलब्धि बन जाती है साथियों, हर असफलता सीखने का अवसर बन जाती है और व्यक्ति परिणाम से नहीं बल्कि प्रक्रिया से प्रेरित होने लगता है।
1: जी हाँ।
0: और यही दृष्टिकोण उसके मन को शांति और स्थिर देता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ध्यान को लक्ष्य से जोड़ने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर पल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्या मैं सफल हो पाऊंगी, क्या मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, अगर मैं हार गई तो क्या होगा। साथियों, इन सवालों से मन भारी हो जाता है, लेकिन जब ध्यान केवल यात्रा पर होता है तो मन हल्का हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है और दिल में शांत विश्वास हो जाता है। श्रोता साथियों, आप वही करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और उसे करते समय पूरी दुनिया से कटकर अपने आप में खो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही फ्लो स्टेट है और यही ध्यान की असली शक्ति है। यदि हम केवल लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं कशिश, हम देखते हैं कि हम उसी दिशा में फंस जाते हैं, लेकिन जब ध्यान यात्रा पर होता है हम नए रास्ते, नए अवसर और नई संभावनाएं देखना शुरू करते हैं। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के रूप में हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं तो एक चित्रकार अगर ध्यान को केवल अच्छी पेंटिंग बेचने पर लगाता है तो दबाव आता है, लेकिन अगर वह पेंटिंग को अपनी यात्रा बना ले तो हर स्ट्रोक कलाकारी और शांति दोनों बन जाता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ध्यान की ही यात्रा उसे कलाकार से महान कलाकार बनाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों, यात्रा पर ध्यान देने से हमारी आत्म जागरूकता भी बढ़ती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि जीवन की यात्रा को महसूस करने वाला व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाता है। वो ये जान पाता है जागृति जी कि उसे क्या पसंद है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और वो अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच पाता है। साथियों,
1: बिल्कुल,
0: इस तरह हम देखते हैं कि यात्रा की समझ व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी ज्यादा परिपक्व बना देती है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, ते बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़े बल्कि उसे अपनी यात्रा बना ले।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि महान व्यक्तियों के जीवन कहानियों में एक बात समान मिलती है कशिश, उन्होंने सफलता का पीछा नहीं किया, उन्होंने पूरे मन से अपने कार्य को जिया। उनका ध्यान यात्रा पर था न कि लक्ष्य पर। सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी से प्रेम करते थे, लता मंगेशकर जी संगीत में डूब जाती थी, विराट कोहली प्रैक्टिस के दौरान दुनिया भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके लिए खेल और संगीत लक्ष्य नहीं यात्रा थे, और यही यात्रा उन्हें महान बनाती है। साथियों, यही सिद्धांत हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो छात्र हो, कलाकार हो, व्यापारी हो या गृहिणी।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताएं तो हम देखते हैं कि यात्रा को अपनाने से जीवन अधिक सार्थक बनता है।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि जीवन का वास्तविक अर्थ श्रोता साथियों मंजिल पाने में नहीं बल्कि रास्तों में छिपा होता है। रास्तों में लोगों से मिलना, अनुभवों से गुजरना, संघर्षों को समझना, ये सब व्यक्ति को वह बनाते हैं जो वह बनना चाहता है। जागृति जी।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जीवन केवल पाना नहीं बल्कि जीना सिखाता है दोस्तों। हम देखते हैं कि लक्ष्य के पीछे भागने वाला मन अक्सर बेचैन रहता है, पर यात्रा का आनंद लेने वाला मन काफी सुकून पाता है। वो छोटी खुशियों को पहचान पाता है, रिश्तों को समय देता है और आत्मसंतुष्टि महसूस करता है साथियों, जिससे धीरे धीरे उसके जीवन की दृष्टि सकारात्मक होने लगती है।
0: जी हाँ कशिश।
1: अब यही अगर बात करें कि यात्रा का अनुभव लक्ष्य से अधिक स्थायी कैसे होता है, तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति तो क्षणिक होती है, कुछ पल की खुशी है, पर यात्रा के अनुभव जीवन भर प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में तनावित रहता है, लेकिन यदि वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेगा तो ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगी।
0: जी हाँ।
1: वहीं एक खिलाड़ी केवल ट्रॉफी पर ध्यान दे तो दबाव बढ़ेगा, पर यदि वह अभ्यास प्रक्रिया से प्रेम करे तो उसका खेलकूद और बेहतर होगा। जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ साथियों, जैसे कि जब ध्यान लक्ष्य पर होता है तो हम काम करते समय बार बार परिणाम सोचते रहते हैं कशिश, इससे काम की गुणवत्ता कम हो जाती है। लेकिन यात्रा पर ध्यान रखने से हम हर पल को गहराई से करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिस काम में गहराई हो जाती है उसमें उत्कृष्टता जन्म लेती है। किसी भी महान कार्य का रहस्य यही है, डीप वर्क, जो केवल यात्रा आधारित ध्यान से संभव है। कशिश, कहा गया है कि लक्ष्य पूरा हुआ तो काम बंद, नया लक्ष्य आया तो फिर से तनाव शुरू।
1: जी।
0: साथियों, यही चक्र जीवन को थका देता है, लेकिन यात्रा ध्यान जीवन में निरंतरता लाती है।
1: बिल्कुल।
0: हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, बढ़ना और सुधारना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे निरंतरता हमारी पहचान बन जाती है। और कशिश, सफलता सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं होता है श्रोताओं, बल्कि सफलता ये है कि हम मंजिल तक पहुंचने की यात्रा को कितनी ईमानदारी, कितने प्रेम और कितनी गहराई से जीते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य पूरा कर ले और खुशी न मिले, इसका मतलब है कि वह यात्रा में ध्यान नहीं रख पाया था।
1: जी।
0: यात्रा के माध्यम से मिली सफलता गहरी होती है, उसमें स्थिरता होती है और सबसे बढ़कर वह मन को तृप्त करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। अब यही अगर बात करें कि यात्रा केंद्रित ध्यान हम कैसे विकसित करें, तो दोस्तों कुछ सरल उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। जैसे कि सीखने की प्रक्रिया आपको रोज लिखनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: छोटे छोटे कदमों का जश्न आप मनाते रहें, असफलता को अनुभव माने न कि रुकावट। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें साथियों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साथ ही तुलना छोड़कर अपनी गति पर ज्यादा ध्यान दें।
0: बिल्कुल।
1: लक्ष्य को दिशा माने लेकिन दबाव न बनने दे श्रोता साथियों। हम देखते हैं जागृति जी की लक्ष्य हमारे युवा साथियों की जिंदगी का हिस्सा है, पर उनका महत्व तभी है साथियों जब हम रास्ते को भी खूबसूरत बनाकर जिए।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति यात्रा का अनुभव लेता है वह परिणाम चाहे जो भी हो खुश, शांत और तृप्त रहता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए ध्यान को मंजिल की दौड़ में मत खो, उसे यात्रा के अनुभव से समृद्ध बनाओ।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे साथियों कि जब हम ध्यान को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं तो हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं, लेकिन जब हम ध्यान को ही अपनी यात्रा बना लेते हैं तो हर दिन नया, हर कदम अर्थपूर्ण और हर क्षण सुंदर बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ध्यान ही वो दीपक है जो यात्रा में प्रकाश देता है। लक्ष्य केवल मील पत्थर है, लेकिन यात्रा ही जीवन है। इसीलिए ध्यान को लक्ष्य से मत बांधिए, ध्यान को ही अपनी यात्रा बना लीजिए, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी
0: हाँ। हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी दोस्त जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, तो अधिकांश लोग धन, दौलत, घर, नौकरी या प्रतिष्ठा का नाम ले सकते हैं। लेकिन अंजलि, वास्तव में इन सभी से पहले जिस संपत्ति की आवश्यकता होती है और वो है स्वास्थ्य की।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही जीवन की हर उपलब्धि का आधार है। अगर शरीर रोगग्रस्त हो, तनाव से भरा हो और जीवन शैली असंतुलित हो, तो सबसे बड़ी सफलता भी आनंद नहीं दे पाती। इसलिए साथियों, ये कहना बिल्कुल उचित है कि स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित भविष्य के सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज का समय जो है वो तेजी से बदल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक सुविधाओं ने जीवन को आसान तो बनाया है और लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी दी हैं। तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी कि किस तरीके से स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य हमारा बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में और हमारी बातें चल रही थी स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य को लेकर। तो अंजलि, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। अगर मनुष्य के पास अपार धन दौलत, ऊंचा पद और बहुत सारी सुविधाएं हों लेकिन उसका शरीर और मन स्वस्थ न हो तो वो उन सभी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाता है। दूसरी ओर एक स्वस्थ व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी खुशहाल, आत्मविश्वासी और सफल जीवन जी सकता है।
1: जी जी,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और जैसा कि हमने गीत से पहले कहा भी था कि आज का जो समय है वो तेजी से बदल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आधुनिक सुविधाओं ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी दी हैं। अनियमित दिनचर्या, जंक फूड, बढ़ता प्रदूषण, तनाव, मोबाइल और स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में स्वस्थ जीवन अपनाना केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी मानी जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य केवल एक नारा नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए एक आवश्यक संकल्प है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा अंजलि, तभी परिवार सुखी होगा और समाज समृद्ध होगा, राष्ट्र सशक्त बनेगा। श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई डॉक्टर बनना चाहता है अंजलि, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कोई किसान बनना चाहता है। लेकिन इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जाता है कि यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन की हर कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक होता है, वह अपने परिवार, समाज और देश के लिए बेहतर योगदान दे सकता है। दूसरी ओर जागृति जी, हम देखते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति की ऊर्जा, समय और संसाधनों का जो बड़ा भाग है वह केवल उपचार पर ही खर्च हो जाता है। स्वास्थ्य केवल श्रोता साथियों बीमारी का अभाव नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और प्रसन्न रहने की अवस्था है। जागृति जी, जब शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और विचार सकारात्मक होते हैं तभी जीवन वास्तव में सुखद बन पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, अक्सर हम तब स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं जब कोई बीमारी हमें घेर लेती है, लेकिन श्रोताओं, समझदारी इसी में है कि हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिससे बीमारियां उत्पन्न ही न हो। नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करें। ये सारी छोटी छोटी अगर आदतें हम अपनाएंगे तो भविष्य की बड़ी समस्याओं से हम बच सकते हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, स्वास्थ्य पर किया गया हर छोटा प्रयास भविष्य में बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है और यही कारण है अंजलि कि कहा जाता है कि रोकथाम उपचार से बेहतर है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर और स्वास्थ्य बनता जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज स्वास्थ्य के पीछे भागते भागते श्रोता साथियों हमने पोषण को पीछे छोड़ दिया है। फास्ट फूड, अधिक तेल, चीनी और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत जागृति जी, हम देखते हैं कि स्थानीय और मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, मोटे अनाज और पर्याप्त पानी शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि शरीर को ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घायु देने का माध्यम भी है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं, हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य को लेकर। ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे कि किस तरीके से स्वस्थ जीवन हमारे लिए सुरक्षित होता है, यही अब बात आती है जागृति जी मानसिक स्वास्थ्य की। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि आज का

0: जीवन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चुनौतियों से भी भरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अकेलापन और डिजिटल दुनिया में बढ़ती निर्भरता ने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है श्रोता साथियों कि हम अपने परिवार मित्रों के साथ समय बिताएं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, ध्यान करें, सकारात्मक साहित्य पढ़ें और प्रकृति के बीच कुछ समय अवश्य बिताएं। मुस्कुराना, संवाद करना और आशावादी दृष्टिकोण रखना भी मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण दवा है।
1: बिल्कुल अंजलि, प्रकृति हमें अनुशासन का सबसे बड़ा संदेश देती है। सूरज समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती है। उसी प्रकार श्रोताओं, यदि हमारा जीवन भी नियमित हो तो स्वास्थ्य बेहतर रहता है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना शरीर को संतुलित रखता है। हम देखते हैं अंजलि कि देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और लगातार स्क्रीन देखना, ये सारी चीजें धीरे धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ तंबाकू, शराब और अन्य नशीली पदार्थ व्यक्ति के शरीर, मन और परिवार और समाज सभी को प्रभावित करता है। नशा केवल स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ता दोस्तों, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देता है।
0: बिल्कुल,
1: विशेष रूप से हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को समझना होगा कि वास्तविक आधुनिकता नशे में नहीं श्रोताओं, बल्कि स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जीने में है। नशा मुक्त युवा ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी है।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, साफ कपड़े, कचरे का उचित प्रबंधन और हरियाली स्वस्थ जीवन के आवश्यक आधार माने जाते हैं। यदि हम अपने घर, विद्यालय, गांव और शहर को स्वच्छ रखते हैं श्रोता साथियों, तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना वास्तव में अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है।
1: बिल्कुल,
0: आज जागृति जी, तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग आवश्यक है। घंटों मोबाइल पर समय बिताना, देर रात तक स्क्रीन देखना और शारीरिक गतिविधियों की कमी बच्चों और युवाओं दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। हमें तकनीक का उपयोग श्रोता साथियों ज्ञान और विकास के लिए करना चाहिए, लेकिन उसके साथ खेल, पुस्तकें, परिवार और प्रकृति के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वस्थ आदतें बचपन से ही हमारे अंदर विकसित होती है। अगर परिवार में पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है तो बच्चे भी इन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि विद्यालय, पंचायत, सामुदायिक संस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग मिलकर अगर जागरूकता अभियान चलाएं तो पूरे समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। अगर युवा शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से संतुलित और नैतिक रूप से जागरूक होंगे तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः ही सुरक्षित होगा।
0: जी हाँ,
1: स्वस्थ युवा बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, अधिक उत्पादक होंगे, नए विचारों का सृजन करेंगे और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि छोटी छोटी हमारी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। स्वस्थ जीवन के लिए श्रोता साथियों बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है, बल्कि छोटी आदतें ही काफी होती हैं। प्रतिदिन समय पर उठना, पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना, स्वच्छता बनाए रखना, तनाव को नियंत्रित रखना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहना और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना, इन्हीं छोटी आदतों से जागृति जी एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं है बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा तो परिवार खुशहाल होगा, समाज मजबूत बनेगा और राष्ट्र समृद्ध बन पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन किसी एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि जीवन भर अपनाई जाने वाली जीवन शैली है। अगर केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार बनता है। आज यदि हम संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति, स्वच्छता, नशा मुक्त जीवन और पर्यावरण संरक्षण जैसी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो आने वाला कल निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित, सुखद और समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, दूसरों को भी स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करें और ऐसी संस्कृति विकसित करें जहां स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक समृद्धि का प्रतीक बने। याद रखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार की ताकत होता है, स्वस्थ परिवार समाज की शक्ति बनता है और स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण करता है। अंजलि
0: जी,
1: इसलिए स्वस्थ जीवन को अपनाइए, क्योंकि यही सुरक्षित भविष्य की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी गारंटी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं, स्वस्थ विचारों से सशक्त समाज बनता है और सशक्त समाज से ही सुरक्षित भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य को अपनी आदत बनाइए, अनुशासन को अपना साथी बनाइए और ऐसा भविष्य गढ़े जहां हर घर स्वस्थ हो, हर परिवार खुशहाल हो और हर नागरिक यह गर्व से कह सके कि स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन
1: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, जिसके स्वास्थ्य लाभ क्या है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे हमारी संस्कृति जो है वो हमें प्रकृति और स्वास्थ्य तीनों से जोड़ती है। आदिवासी समाज जो है वो सदियों से जंगल के साथ मिलकर जीवन जिताया है।
0: बिल्कुल,
1: उनके लिए जंगल मनीषा केवल लकड़ी, फल या ईंधन का स्रोत नहीं है, बल्कि एक जीवन साथी है। जंगल उन्हें भोजन देता है, औषधियां देता है, स्वच्छ हवा देता है और स्वस्थ जीवन जीने की सीख भी देता है। आधुनिक विज्ञान आज जिन बातों पर शोध कर रहा है उनमें से कई बातें आदिवासी समुदाय वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर अपनाते आए हैं। तो आज हम जानेंगे जंगल से जुड़ा यह पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज का जीवन जंगल से शुरू होकर जंगल पर निर्भर करता है। उनका भोजन, आवास, वस्त्र, औषधि, पशुपालन, आजीविका का मुख्य साधन है वो जंगल है। वे जंगल से उतना ही लेते हैं श्रोता साथियों जितनी आवश्यकता उन्हें होती है और बदले में वे जंगल की रक्षा करते हैं। श्रोता साथियों, यह सोच स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ जंगल ही स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और औषधीय पौधों का स्रोत है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे अंजलि जी, तभी हम देखते हैं कि मानव जीवन है वो सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। वे मौसम के अनुसार भोजन बदलते हैं, स्थानीय फल फूल और कंदमूल खाते हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग करते हैं और शारीरिक श्रम को जीवन का हिस्सा मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी कारण मनीषा उनके जीवन में प्रकृति और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहता है। वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए दवा से पहले सही भोजन, स्वच्छ वातावरण और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। जंगल अनेक प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ का खजाना है। महुआ के फूल, तेंदू, जामुन, बेर, आंवला, बेल, सीताफल, इमली, शहद, बांस की कोपले, अलग अलग प्रकार की पत्तेदार सब्जियां और कंदमूल शरीर को आवश्यक पोषक प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथी, ये खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर मजबूत बनता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय विभिन्न औषधियों की पहचान और उनके उपयोग में अत्यधिक दक्ष होते हैं। वे मौसम, पौधों की आयु, पत्तियां, जड़े और छाल और उनके गुणों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उनके अनुसार किसी भी जड़ी बूटी का सही समय पर संग्रहण, उचित मात्रा में उपयोग ही प्रभाव को बढ़ाता है। यह ज्ञान श्रोता साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज सामान्य बीमारियों का उपचार जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों से ही करते हैं। बुखार के लिए कुछ विशेष पौधों की पत्तियों का काढ़ा वे बनाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सर्दी खांसी में तुलसी, अदरक, काली मिर्च वनस्पतियों का उपयोग वे करते हैं। घाव भरने के लिए श्रोता साथियों औषधीय पत्तियों का लेप वे बनाते हैं। पेट दर्द में श्रोता साथियों कड़वी जड़ों या प्राकृतिक बीजों का उपयोग वे करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि त्वचा के रोगों में नीम, करंज या अन्य औषधीय पौधों का भी उपयोग करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इन उपचारों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग होने से कई बार दुष्प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, लेकिन श्रोता साथियों गंभीर बीमारी से परीक्षित होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेकर उनके अनुसार हमें अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय अनेक औषधीय पौधों की पहचान रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: किलोई, नीम, तुलसी, अर्जुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अश्वगंधा, कालमेघ, अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग बुखार, सर्दी खांसी, पेट दर्द, घाव, त्वचा संबंधी समस्याओं में करते आए हैं। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज हर मौसम के अनुसार खान पान बदलता है। गर्मी में ठंडक देने वाले फल और पेय, वर्षा ऋतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले अनाज और बीजों का सेवन किया जाता है। इससे शरीर मौसम के बदलाव के अनुसार स्वयं को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जंगल से लकड़ी लाना, खेती करना, पैदल चलना, पशुपालन और अन्य दैनिक कार्य आदिवासी जीवन का हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: इसमें अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका पूरा दिन सक्रिय रहता है। यही कारण है कि नियमित शारीरिक गतिविधि उनके स्वास्थ्य का मजबूत आधार बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि जंगल का स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा और हरियाली मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती है।
1: हाँ।
0: प्रकृति के बीच रहने से श्रोता साथियों मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आदिवासी भोजन में मोटे अनाज, स्थानीय दालें, मौसमी सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं। कम तेल, कम मसाले और ताजा भोजन पाचन को बेहतर बनाता है और जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा भी कम करता है। आदिवासी समाज वर्षों से प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा करता आया है। स्वच्छ पानी का महत्व वे भली भांति समझते हैं। जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल का संरक्षण और पानी का सीमित उपयोग उनके जीवन का हिस्सा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है। इसी के साथ आदिवासी समुदाय में सामूहिक जीवन की परंपरा मजबूत होती है। मनीषा, खुशी और दुख दोनों में पूरा समुदाय साथ खड़ा होता है। यह सामाजिक सहयोग तनाव कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जंगल वो प्राकृतिक रूप से वायु को शुद्ध करते हैं। आदिवासी समाज जंगलों की सफाई बनाए रखने में, पेड़ों की अनावश्यक कटाई, साथ ही आग से बचाने में विशेष ध्यान रखते हैं। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही श्रोता साथियों, प्राकृतिक वातावरण मन को शांति देता है। आदिवासी समाज में संगीत, लोक नृत्य, सामूहिक जीवन, त्योहार और प्रकृति के साथ समय बिताने की परंपरा है, वो हमारे तनाव को कम करने में मदद करती है। आज वैज्ञानिक भी श्रोता साथियों यह मानते हैं कि हरियाली और प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है।
0: जी हाँ मनीषा, यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो औषधीय पौधे, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और पौष्टिक भोजन भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जंगल बचाना केवल पर्यावरण बचाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है।
1: जी हाँ।
0: स्थानीय और मौसमी भोजन को हमें अपनाना है। इसी के साथ हमें नियमित शारीरिक श्रम करना है, जंगलों और जैव विविधता की रक्षा करनी है, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना है और इसी के साथ बुजुर्गों से स्थानीय औषधीय और खाद्य पदार्थों की जानकारी हमें लेनी है।
1: जी बिल्कुल,
0: प्रकृति हमें हर दिन यह सिखाती है श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलन जरूरी है। आदिवासी समाज का पारंपरिक ज्ञान हमें बताता है कि यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज तीनों मजबूत होगा।
1: जी हाँ।
0: आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक अनुभव एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि यही समझ के साथ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसलिए किसी भी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति केवल उसकी इमारतें या तकनीक नहीं होती बल्कि उनका अनुभव और जीवन जीने की समझ होती है।
1: जी हाँ।
0: आदिवासी समुदाय श्रोता साथियों जंगलों के बीच रहते हुए ये साबित करते हैं कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित संबंध, पौष्टिक भोजन और सामूहिक जीवन और नियमित श्रम और पर्यावरण के सम्मान से मिलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अमूल्य पारंपरिक ज्ञान को केवल अतीत की विरासत न माने बल्कि वर्तमान भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखें।
1: जी
0: जब
1: हाँ।
0: हम जंगलों की रक्षा करते हैं, स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं और आदिवासी समुदाय के अनुभवों को सीखेंगे, तब हम केवल अपनी सेहत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित जीवन की नींव रखेंगे। प्रकृति के साथ जुड़ाव ही मनीषा स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी आदिवासी जीवन से कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकती है। प्राकृतिक भोजन को अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, नियमित शारीरिक श्रम को अपनाना, साथ ही स्वच्छता बनाए रखना, पेड़ों का सम्मान करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान केवल इतिहास ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक जीवंत प्रेरणा भी है।
0: बिल्कुल,
1: यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति, संतुलित भोजन, नियमित श्रम, स्वच्छ पर्यावरण और सामुदायिक सहयोग से प्राप्त होता है। यदि हम इस ज्ञान का सम्मान करते हुए श्रोता साथियों जंगलों का संरक्षण करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जिए, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य छोड़कर जाएंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है विश्व प्रकृति संरक्षण को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई यानी आज ही के दिन इस दिवस को मनाया जाता है।
0: जी हाँ,
1: इस दिवस का उद्देश्य कशिश लोगों को प्रकृति पर्यावरण वन जल वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलें।
0: बिल्कुल,
1: बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगल की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है।
0: जी जी,
1: आज कार्यक्रम में हम यही बातचीत करने वाले हैं कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से हमारे ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम पहले कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर मौजूद वायु, जल, मिट्टी, वन, पर्वत, नदियां, समुद्र और सभी प्रकार की जीव जंतु प्रकृति का ही हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए जरूरी प्रत्येक वस्तु प्रदान करती है। यदि श्रोता साथियों प्रकृति संतुलित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित और समृद्ध रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसी उद्देश्य से हर वर्ष आज के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: कह सकते हैं अंजलि जी कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक करना है, साथ ही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रेरित भी करना है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है।
0: बिल्कुल,
1: यदि धरती पर स्वच्छ हवा, निर्मल जल, उपजाऊ मिट्टी, हरे भरे वन और जैव विविधता सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित और समृद्ध रह सकेगा। आज विज्ञान और तकनीक के युग में श्रोता साथियों हम विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रकृति पर बढ़ता दबाव भी कशिश हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है, प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा उपयोग में हम ले रहे हैं, प्लास्टिक इधर उधर बिखरा हुआ हमें दिखता है, जल स्रोत सूख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या हमें चेतावनी दे रही है कि अब समय आ गया है कि हम विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करें।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
0: जी हाँ,
1: यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल, जंगल, जमीन, खनिज, वन्य जीव और जैव विविधता सीमित है। यदि इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में मानव जीवन के सामने गंभीर संकट खड़े हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा दी है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, भोजन, औषधियां, ईंधन, जीवन के लिए आवश्यक जो भी हमें संसाधन चाहिए वो हमें प्रकृति से मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है श्रोता साथियों बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। और साथियों प्रकृति हमारे जीवन का आधार इसलिए क्योंकि हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन करते हैं और जिस धरती पर रहते हैं, ये सब प्रकृति से ही प्राप्त होता है।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति केवल पेड़ पौधों, नदियों और पहाड़ों का नाम नहीं है अंजलि जी, बल्कि ये संपूर्ण जीवन का आधार है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध बहुत ही पुराना और गहरा है। यदि प्रकृति असुरक्षित रहेगी तो जीवन भी असुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। यदि हम आज प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे साथियों तो आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो संकट में हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, सुबह की ताजी हवा, खेतों की हरियाली, पेड़ों की छाया, पक्षियों का जो मधुर स्वर होता है, बहती हुई नदियां, वर्षा की बूंदे, ये सभी प्रकृति की अनमोल देन है।
0: जी,
1: कहना चाहेंगे कि मनुष्य का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ है। हमारा भोजन खेतों से आता है, पानी नदियों और वर्षा से मिलता है, ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है और दवाइयों का बड़ा हिस्सा भी वनस्पतियों से मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों प्रकृति असंतुलित हो जाए तो सबसे पहले इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए प्राकृतिक संरक्षण जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
0: जी
1: क्यों
0: हाँ,
1: आवश्यक है तो श्रोता साथियों स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता हमारे लिए होती है। यदि प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो अनेक बीमारियां तेजी से फैलेंगी। आज कशिश कई क्षेत्रों में भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा करके ही भविष्य का जल सुरक्षित किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बढ़ता तापमान, अमित अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के संकेत हमें दे रही है।
0: जी हाँ।
1: अधिक वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इस समस्या को कम करने में मदद करता है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कि किसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। यदि मिट्टी की उर्वरकता घटेगी, पानी की कमी होगी तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसलिए प्रकृति में प्रत्येक जीव का अपना महत्व है।
0: बिल्कुल।
1: यदि एक भी प्रजाति समाप्त होती है तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं प्रकृति संरक्षण दिवस को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरसी गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना कि आज प्रकृति किस तरीके से हमारे लिए कई सारी चुनौतियां लेकर आ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के सामने प्रकृति की कई चुनौतियां हमें देखने को मिल रही है।
1: जी हाँ,
0: आज हम देखते हैं कि वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण, नदियों और तालाबों का दूषित होना, भूजल का लगातार गिरना, रासायनिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन्य जीवों का घटता अस्तित्व, अनियोजित शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन। श्रोता साथियों, इन समस्याओं का असर केवल पर्यावरण पर नहीं बल्कि मानव जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: गांवों का जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन, जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते हैं, तालाब, कुएं और नदियां गांवों की जीवन रेखा है। यदि गांव का प्रत्येक परिवार जल संरक्षण करे, पेड़ लगाए, प्लास्टिक का उपयोग कम करे और सामुदायिक तालाबों की रक्षा करे तो पूरा क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध बन सकता है।
1: जी हाँ जी, और जैसा कि गीत से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वर्तमान समय में प्रकृति कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है, जिसमें जैसा कि आपने बताया था कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, नदियों और जिलों में प्रदूषण फैल रहा है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, साथ ही वन्य जीवों का अवैध शिकार भी हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन सभी समस्याओं के कारण अनेक पशु पक्षियों और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित होगा।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि प्रकृति संरक्षण केवल जो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है साथियों, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है।
0: जी जी,
1: इसके लिए हमें ढेर सारे उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है।
0: जी हाँ,
1: जल का सोच समझ कर उपयोग करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना, कचरे का उचित प्रबंधन और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग जैसी जो चीजें हैं उन्हें अपनाना,
0: बिल्कुल
1: ऊर्जा की बचत करना, सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, दोस्तों नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और पर्यावरण संरक्षण संबंधित नियमों का पालन करना।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि अंजलि जी, ऐसे कुछ उपाय अगर हम अपनाते हैं तो प्रकृति संरक्षण करने के जो हम कह सकते हैं कि प्रयास है, उसमें हम अपना अहम योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, भारत की संस्कृति में प्रकृति को माता का स्थान दिया गया है। पेड़ों को पूजा, नदियों को सम्मान, पर्वतों को देव स्वरूप माना जाता है और पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना हमारी परंपरा का हिस्सा रही हैं। पुराने समय में लोग आवश्यकता के अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। यही कारण था कि पर्यावरण का संतुलन लंबे समय तक बना रहे। आज आवश्यकता है कि आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ इन परंपराओं से भी प्रेरणा ली जा सकती है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों और युवा समाज में बदलाव लाने की सबसे बड़ी शक्ति है। वे पौधारोपण अभियान चला सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त अभियान चला सकते हैं, जल बचाने का संदेश दे सकते हैं, पर्यावरण क्लब बना सकते हैं और अपने परिवार को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। श्रोता साथियों, महिलाएं परिवार की पहली शिक्षिका होती हैं। वे बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखा सकती हैं, पानी की बचत कर सकती हैं, रसोई के जैविक कचरे से खाद बना सकती हैं और कपड़े के थैले उपयोग करने की आदत भी विकसित कर सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, पानी का दुरुपयोग न करें, वर्षा जल संचयन अपनाएं, बिजली की बचत करें, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैले अपनाएं, कचरे को अलग अलग करके निस्तारण करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें, स्थानीय पेड़ पौधों और वन्य जीवों की रक्षा करें।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखें। दूसरों को भी कशिश पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें प्रेरित करने की जरूरत है।
1: जी हाँ अंजलि जी, वही अगर विद्यार्थियों की इसमें क्या भूमिका रह सकती है इस चीज को लेकर हम बात करें तो जैसा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो समाज का भविष्य होते हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: वे प्रकृति संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाकर, प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाकर, जल और बिजली की बचत करके, साथ ही पर्यावरण जागरूकता रैलियों में भाग लेकर वे समाज को प्रेरित कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: श्रोता साथियों, यदि बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाए तो भविष्य में अंजलि जी पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य है वो बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है।
0: जी हाँ कशिश, जब पूरा गाँव मिलकर पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेता है तब परिवर्तन स्पष्ट हमें दिखाई देता है।
1: जी जी।
0: यदि ग्राम पंचायत, विद्यालय, स्कूल सहायता समूह, किसान समूह, युवा मंडल मिलकर वृक्षारोपण, जल संरक्षण, तालाबों की सफाई और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाए तो कुछ वर्षों में पूरे क्षेत्र का पर्यावरण बेहतर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: प्रकृति संरक्षण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों, एक पेड़ लगाने से केवल हरियाली नहीं बढ़ती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का एक नया आधार तैयार होता है।
1: बिल्कुल।
0: पानी की हर बूंद, मिट्टी का हर कण और हवा की हर सांस हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि बातें हम श्रोता साथियों से प्रकृति संरक्षण को लेकर कर ही रहे हैं और गीत संगीत भी हमारे श्रोता साथियों से इसी विषय से जुड़े चल ही रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन कर लिया जाए।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि प्रकृति संरक्षण दिवस को लेकर बातें चल रही है साथियों, और गीत से पहले हम इसमें विद्यार्थियों की क्या भूमिका है ये जान पाए थे अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें तो श्रोता साथियों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस केवल एक दिवस मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का संकल्प लेने का भी दिन है।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पृथ्वी मिल सकेगी। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए अंजलि जी कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। इसलिए हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना है दोस्तों, और पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक आदत का हिस्सा बनाना है।
1: जी।

0: देखते रहेंगे और बहुत सारी चीजों से अनजान रहेंगे तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हम करते रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दूरदर्शिता इसी में है कि हम विकास की ऐसी राह चुने जिसमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण दोनों शामिल हो।
1: जी
0: आज आवश्यकता केवल बड़े अभियानों की नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव की है। जब हम अनावश्यक संसाधनों की खपत करेंगे, स्थानीय और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं को अपनाएंगे, जल और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, जैव विविधता का सम्मान करेंगे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने की आदत बनाएंगे, तभी प्रकृति संरक्षण एक आंदोलन नहीं बल्कि जनजीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन सकेगा।
1: बिल्कुल।
0: यह परिवर्तन किसी कानून के डर से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझकर होना चाहिए।
1: जी हाँ दिलीप जी, साथ ही अगर बात करें प्रकृति संरक्षण और सतत विकास की, तो दोस्तों प्रकृति संरक्षण का सीधा संबंध सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होता है। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों पर कोई संकट ही ना आए। दोस्तों यदि विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा नहीं की जाएगी तो आर्थिक प्रगति भी लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह पाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज विज्ञान और तकनीक प्रकृति संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती और श्रोता साथियों कई ऐसे वैज्ञानिक प्रबंधन जैसी तकनीक हैं जो प्रदूषण को कम कर रही है।
0: बिल्कुल।
1: और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है डिजिटल तकनीक की सहायता से। जंगलों, वन्य जीवों और जल स्रोतों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा रही है।
0: जी हाँ कशिश, हमारे गाँव, खेत, जंगल, पहाड़, नदियाँ और तालाब केवल प्राकृतिक संपदा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और जीवन की मूल पूंजी है।
1: जी हाँ।
0: यदि ये सुरक्षित रहेंगे तो खेती मजबूत होगी, पशुधन स्वस्थ रहेगा, जल स्रोत समृद्ध होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त बनेगी।
1: बिल्कुल।
0: प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करता बल्कि रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समृद्धि का भी आधार तैयार करता है।
1: जी हाँ।
0: यही कारण है कि प्रकृति के प्रति किया गया हर छोटा प्रयास पूरे समाज के भविष्य को मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ।
0: ये साथियों, इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर हम केवल एक पौधा लगाने या एक दिन जागरूकता फैलाने तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसा संकल्प लें जो पूरे वर्ष हमारे व्यवहार में दिखाई दे।
1: बिल्कुल।
0: अपने परिवार, बच्चों, पड़ोस और समुदाय को भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाए। यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की धरती को थोड़ा भी बेहतर बनाने का प्रयास करे तो पूरे देश में सकारात्मक परिवर्तन की नई लहर पैदा हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए, प्रकृति को हमारी आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें प्रकृति की आवश्यकता है। इसलिए हम ऐसे नागरिक बने जो विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें, संसाधनों का सम्मान करें, धरती को पहले से अधिक सुरक्षित, हरित और समृद्ध बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपें।
1: जी जी।
0: यही सच्ची प्रकृति है, जिम्मेदार नागरिकता और विश्व प्रकृति संरक्षण जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर भारतीय संस्कृति और प्रकृति को लेकर हम बात करें तो जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है।
0: जी जी।
1: साथियों, हमारे त्योहार, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों या पशु पक्षियों के सम्मान का ही संदेश देती है। जैसे कि पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे वृक्षों का विशेष महत्व यहाँ पर बताया जाता है।
0: जी हाँ।
1: यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। आज श्रोता साथियों, हम ढेर सारे उपाय अपनाकर हमारी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण एक ऐसा दिवस है जहाँ हमें यह संकल्प लेने का मौका मिलता है दोस्तों कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: जल और ऊर्जा की बचत करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, कचरे का उचित निपटान करेंगे और अपने परिवार और समाज को भी प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे।
0: जी
1: अंजलि हाँ। जी, ये हमारे जो छोटे छोटे प्रयास होंगे वही मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि किसी भी सभ्यता की पहचान केवल उसकी इमारतों, आधुनिक तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं होती, जैसा कि हम हर हमेशा कार्यक्रम में कहते ही रहते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपनी प्राकृतिक धरोहरों की कीमती कितनी कीमत समझता है और कितनी जिम्मेदारी से उसकी रक्षा करता है।
1: जी हाँ।
0: प्रकृति हमें हर दिन बिना किसी अपेक्षा के जीवन देने का कार्य करती है, लेकिन यदि उसके संतुलन को लगातार नुकसान पहुंचाया जाए तो इसका असर केवल जंगलों और नदियों तक सीमित नहीं रहे। का, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, खेती, आजीविका, मौसम और सामाजिक जीवन पर भी गहराई से दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए प्रकृति संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी

0: सुरक्षा जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हम प्रकृति संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें प्रकृति संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे कदम अपना कर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। पानी का अनावश्यक उपयोग न करें। वर्षा जल संचयन अपनाएं। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करें। कूड़े को इधर उधर न फेंके। जैविक खेती और प्राकृतिक खाद को बढ़ावा दें। जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करें। बिजली की बचत करें और बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में शिक्षित करें।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जब पूरा गाँव मिलकर किसी कार्य को अपनाता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है।
1: जी जी,
0: ग्राम सभा में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए। स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान चलाए जा सकते हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कपड़े के थैले बना सकती हैं। युवा तालाबों की सफाई और पौधारोपण अभियान चला सकते हैं। यदि समाज का हर वर्ग कशिश जुड़ जाए तो प्रकृति संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ साथियों को बताना चाहेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि साथियों जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की जीव जंतु, पशु पक्षी,
0: बिल्कुल
1: कीट पतंगे और वनस्पतियां। प्रत्येक जीव जंतु के संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं।
0: जी जी,
1: यदि कोई एक प्रजाति भी विलुप्त तो हो जाती है अंजलि जी, तो उसका पूरा प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इसलिए सभी जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण भी जरूरी है। आज जैसे कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना कर रही है, असमय वर्षा, लंबे समय तक सूखा, भीषण गर्मी, बाढ़, जंगलों में आग और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि इसके प्रमुख प्रभाव है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन सभी समस्याओं से कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का संरक्षण खतरे करके श्रोता साथियों, प्रकृति का संरक्षण करके इन खतरों को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे ढेर सारे उपाय अपनाने होंगे जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे।
0: जी हाँ कशिश, एक पेड़ केवल छाया ही नहीं देता बल्कि वह ऑक्सीजन, फल, पक्षियों का घर और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन भी देता है। एक बूंद पानी की कीमत वही समझ सकता है जिसने प्यास देखी हो। प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। अब समय आ गया है कि हम भी प्रकृति को कुछ लौटाएं।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। यदि हमारी प्रकृति जंगलों के विनाश, नदियों के प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरकता के अनुसार उन सारी चीजों को नुकसान पर आधारित होगी तो उसका लाभ अधिक समय तक नहीं टिकेगा।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची समृद्धि वही है कि जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित जल स्रोत, हरियाली और स्वास्थ्य समाज साथ साथ आगे बढ़े।
1: जी हाँ,
0: केवल श्रोता साथियों पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने तक सीमित न रहें बल्कि उन्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी भी निभाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपने घर, खेत, गाँव और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं। जल की हर बूंद का सम्मान करें और ऐसे जीवन मूल्यों को अपनाएं जो धरती को सुरक्षित रखे। याद रखिए श्रोता साथियों, प्रकृति हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से लिया गया एक अमूल्य उधार है। इसे सुरक्षित लौटाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: जब हर व्यक्ति यह संकल्प लेगा कि वह अपने हिस्से का पर्यावरण बचाएगा तभी हमारा गाँव, हमारा देश और पूरी पृथ्वी अधिक हरी भरी, स्वच्छ और जीवनदायी बन सकेगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है। लेकिन फिर भी साथियों, जल, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना हमें चाहिए, क्योंकि अनावश्यक दोहन भविष्य में संसाधनों की कमी उत्पन्न कर सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, संसाधनों का संतुलित उपयोग ही सच्चा संरक्षण है। हम जैसा कि जानते हैं कि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है।
0: जी जी,
1: स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरियाली से अनेक बीमारियों की संभावनाएं कम होती है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषित वातावरण श्वसन रोग, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे।
1: जी हाँ,
0: ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को।
1: नमस्कार साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जे हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए

हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं, हमारे इस नंबर पर हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है हम है राहें प्यार की। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पॉल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भागपत सी, आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत की अनुरोध करता है जौनपुर सी, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरत अबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरी अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। भलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला जी खटक। सहारनपुर से जुड़ रहे हैं रमेश चौरासिया और सोनाली डामोन। बालो से जुड़ना चाह रहे हैं डोली और प्रभा जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दीपक खटक, प्रमिला खटक। चंद्रनगर से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश डोमिन और शालिनी डोमिन। लाहौर से जुड़ रहे हैं प्रमिला जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर शहर से बेबी अंसारी और डब्ल्यू जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रतिजी संगई। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल जी उमा। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी और राकेश ताई और सपना जी। डुमराव से जुड़ रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: बस प्यार रहेगा यहाँ रे।
1: आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बक्सर शहर से। फिल्म का नाम है मोहब्बत है, गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है। इस गीत की फरमाइश करता है बेबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। इस गीत की अनुरोध करता है महाराष्ट्र से मास्टर खिल्लू परवेज, बिकम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं मास्टर विठल सुरुशी, सुष्मा सुरुशी, परिधि सुरुशी, मायराजी सुरुशी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश रावल, प्रियंका, नमन, गुरकीरत, सिमरत, मन्नत और गुरशब्द सिंह रावल। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पैरों में बंधन हैं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे पैरों में बंधन है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है सलामी, गीत के बोल हैं चेहरा क्या देखते हो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव और अपन नव नामदेव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चनाताई गोड़ा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभाजी गोड़ा ने और महेश राम टेके जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सलामी, गीत के बोल हैं चेहरा क्या देखते हो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा, कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत सी। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, नमन गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं मुंगी से बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परवेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने किशोर कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सलार पहलगाम कश्मीर से। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है पीरजादा मिराजुद्दीन, नजनुद्दीन और केसरुद्दीन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मराठवाड़ा से, समियत मशरूम, साइना हसन, अक्साना जिया, आफिया इब्राहिम जी और सदाम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेदी इरशाद, अजरत अबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम और मोहम्मद सहक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्रे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से जयश्री मेलेत्रे, कविता जी और पुष्पा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला सुबह 11 बजे से चलता है दोपहर 1 बजे तक, और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही जारी रखते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है गंज द्वारा से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों गुलामी गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन। गंजू द्वारा से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। श्रोता साथियों बताना चाहूंगी गंज द्वारा से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरेश चौहान, मनोज कुमार मीणा, मेघवार मीणा, सुरेश विक्रम सिंह, चंद्रपाल, राजेश प्रसन्न, महावीर। छत्तीसगढ़ से हैं देवीलाल जी, राजा राम जी, मंत्रा राय, संदीप जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं पुष्पा कुमार जी, हेमंत टेलर जी, रामलाल, प्यारे लाल, श्यामलाल, घनश्याम जी, राधेश्याम जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन मुकुम बरंजिश। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है श्रोता साथियों बरकाकाना से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी हैं कलाइयां। फरमाइश करता बरकाकाना से जुड़ रहे हैं साजिर परवान, लखनलाल जी, रामस्वरूप कुमार जी, अभिषेक वर्मा जी, हेमंत टेलर, नरेश चौहान, अजित कुमार, मलका खाना जी और मनोज कुमार, अजय पाटिल जी, राजेश पाटिल जी, राकेश कुमार जी, मेघराज वीना, अमर सिंह, श्यामलाल जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नाशिद शेख, नाजा नाशिद, शाजिद शाहिद, गोविंद पुनम अदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो मेरठ से जुड़ रहे हैं, अनिल जैन, सेम जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलाइयां।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है कानपुर से। फिल्म का नाम है अलग अलग गीत के बोल हैं कभी बेकसी ने मारा। इस गीत को आवाज दिए किशोर कुमार जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अमर सिंह, श्यामलाल जी, मेघराज मीना जी, मनोज कुमार, हरिश्चंद प्रजापति, मेघराज मीना जी, हीरालाल प्रजापति, भावना जैन जी, अभिषेक भट्ट जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी घाटोल से भी जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, हेमंत जी, नरेश चौहान जी, अनित कुमार और मलखान जी, मनोज कुमार जी, लखन लाल जी और शिवलाल जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। श्रोता साथियों, नाम बताना चाहूंगी शाविर परवाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। कलनार से हैं सुधर नूतन, संदीप गुलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इच्छपीत शर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कभी बेकसी ने मारा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं मधुबनी बिहार से। अगली फरमाइश है ये साथियों, फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूंगी, तहलका। गीत के बोल है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। श्रोता साथियों, फरमाइश करता है हेमंत टेलर, बुसिला कुमार, सुनील कुमार जी, योगेंद्र प्रजापति, हरदेव कुमार, जसवंत कुमार, घनश्याम जी। इसी बीच श्रोता साथी और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, कैलाश नीनामा, मुकेश पांडे, सतीश पांडे, कल्पना सिंह जी, पूनम गौतम, शैलेंद्र कुमार, दिलीप कुमार जी, ये दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शाबिर परवाना जी, संतोष कुमार जी, अंसारी जी, हेमंत टेलर जी और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। श्रोता साथियों, नाम बताना चाहूँगी, रामशारा विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, बंजनू, रजनू और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी, अजय कुमार, अभिका जीविका, सानू कुमार। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश गीत की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी। बरका काना से जुड़ना चाह रहे अफजाल ताहिर, साइन सोहनू और हरिशंकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मिथिलेश प्रजापत, थारेलाल जी, मागे पतलाल जी, बंसीलाल जी, नरेश चौहान जी, रामू कटारा, कपिल, मेघराज मीना और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। जुड़ना चाह रहे श्रीगंगानगर से राम कुमार रेवा, चंद्रकला रेवाड़, उत्कर्ष चौहान, श्रीमती बानी चौहान, मेघराज मीणा, नरेश चौहान, विजय कुमार जी, नरेश पाटिल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है, फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, तुमसे अच्छा कौन है, और गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं राम कुमार वर्मा, मोहनलाल जी, गोविंद नरेश चौहान, हेमंत टेलर, मेघराज मीणा, कुलदीप कुमार, विकेश कुमार, विक्रम कुमार, भरत निनामा, लक्ष्मण लाल, सूरज प्रजापति, हरिमोहन जी और घमंड, और कह सकते हैं कि मीणा जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, भरत निनामा, गजराज कटारा, राकेश गरासिया, मानसिंह निनामा, नारायण दास, हरिशंकर कुमार, गंगाराम जी प्रजापत, अरुण विश्वकर्मा जी, अनिल विश्वकर्मा जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं श्रोता साथी सूरपुर से हरकेश जी, राकेश कुमार जी, कृष्णाकांत शर्मा जी, सीताराम निनामा, हरीश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, हेमंत टेलर जी। रायबरेली से जुड़ना चाह रहे हैं अभिषेक जैन, हरीश कुमार, शंभुलाल कटारा, श्यामलाल निनामा, आजाद कुमार, चिराग शर्मा, राकेश मीणा जी, मेघराज मीणा जी, महेश निनामा, विकास कटारा, आकाश कटारा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, बताना चाहूंगी मधुबनी बिहार से। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। गीत के बोल हैं बोले चूड़िया बोले कंगना। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं शाजिर परवाना जी, लखनलाल जी, रामस्वरूप कुमार, अभिषेक वर्मा, हेमंत टेलर, अजीत कुमार जी, मलका खान जी, मनोज कुमार, अजय प्रताप जी और राकेश पटेल, राकेश कुमार जी, अमर सिंह, श्यामलाल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त छत्तीसगढ़ से, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक भट्ट जी, आशा देवी, भावना जैन, इम्तियाज जी, सत्यम कुमार, रोशन कुमार, मेघराज मीना, अक्षय सिंह जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो गंजुड़वाड़ा से जुड़ रहे हैं, इर्शाद अहमद अंसारी, कामरान, इर्शाद अरमान, ईशा अजरा तबस्सुम जी। श्रोता साथी हैं और भी जो जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी साथियों, मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बोले चूड़िया बोले कंगना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है, क्योंकि इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करे। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकाले। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: साथियों लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी
1: आज
0: हाँ।
1: के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़े बल्कि उसे अपनी ही यात्रा बना ले।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जीवन की राहों पर चलते हुए हम अक्सर अपने ध्यान को किसी एक लक्ष्य से बांध देते हैं। हमें लगता है कि सफलता केवल तभी मिलती है जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जीवन का सार केवल मंजिल में ही छिपा है? नहीं श्रोताओं, असल जीवन तो उस यात्रा में छिपा है जिसे हम ध्यान के साथ जीते हैं। इसलिए कहा जाता है कशिश की ध्यान को किसी लक्ष्य से मत जोड़िए, ध्यान को ही अपनी यात्रा बनाइए साथियों।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले गीत सुन ले हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। अब बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि ध्यान को हमें किसी लक्ष्य से न जोड़कर बल्कि अपनी यात्रा बना लेनी है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं जागृति जी कि हमारा जीवन निरंतर प्रयासों, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ है। हम सभी अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। किसी को अपना करियर बनाना होता है तो किसी को बेहतर इंसान बनना होता है। साथ ही कभी कभी किसी को तो आर्थिक स्थिरता भी चाहिए होती है।
1: जी हाँ,
0: तो कोई जीवन में शांति चाहता है साथियों। लेकिन अक्सर हम लक्ष्य को इतना बड़ा बना देते हैं कि यात्रा का सौंदर्य ही हम भूल जाते हैं। लक्ष्य पर केंद्रित रहना अच्छा है साथियों, पर यदि ध्यान केवल परिणाम पर अटक जाए तो प्रक्रिया का आनंद खो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहा जा सकता है कि ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़े बल्कि उसे अपनी एक यात्रा ही बना ले।
1: बिल्कुल कशिश, ये विचार बहुत गहरा है, व्यापक है और आधुनिक जीवन की उलझनों को समझने का एक शांत, स्थिर और सच्चा समाधान है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमें इसे विस्तार से समझना होगा। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो। ये बात गलत नहीं है साथियों, लेकिन अधूरी है।
0: जी,
1: क्योंकि लक्ष्य जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, जीवन स्वयं उससे कहीं बड़ा है। जब हम ध्यान को लक्ष्य से बांध देते हैं तो हम लक्ष्य पूरा होने तक खुद को स्थिर, तनावग्रस्त और दबाव में रखते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: यदि लक्ष्य पूरा हो गया हम खुश होते हैं, यदि पूरा न हुआ हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान को लक्ष्य से नहीं बल्कि कार्य से जोड़ दिया जाए तो जीवन एक निरंतर शांत, सुंदर यात्रा बन जाता है। लक्ष्य अंत है साथियों, ध्यान साधना है और साधना ही जीवन का सबसे सुंदर रूप है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि लक्ष्य पर ज्यादा केंद्रित ध्यान दुष्प्रभाव ला सकता है। जिससे कि दोस्तों जब व्यक्ति केवल लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है तो उसके मन में बेचैनी, दबाव और लगातार तुलना बढ़ जाती है।
1: जी हाँ,
0: हर छोटी छोटी गलतियाँ उसे निराशा में डाल देती है। परिणाम पाने की जल्दी

0: पाऊंगी, क्या मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, अगर मैं हार गई तो क्या होगा। साथियों, इन सवालों से मन भारी हो जाता है, लेकिन जब ध्यान केवल यात्रा पर होता है तो मन हल्का हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है और दिल में शांत विश्वास हो जाता है। श्रोता साथियों, आप वही करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और उसे करते समय पूरी दुनिया से कटकर अपने आप में खो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही फ्लो स्टेट है और यही ध्यान की असली शक्ति है। यदि हम केवल लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं कशिश, हम देखते हैं कि हम उसी दिशा में फंस जाते हैं, लेकिन जब ध्यान यात्रा पर होता है हम नए रास्ते, नए अवसर और नई संभावनाएं देखना शुरू करते हैं कशिश।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के रूप में हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं तो एक चित्रकार अगर ध्यान को केवल अच्छी पेंटिंग बेचने पर लगाता है तो दबाव आता है, लेकिन अगर वह पेंटिंग को अपनी यात्रा बना ले तो हर स्ट्रोक कलाकारी और शांति दोनों बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों ध्यान की ही यात्रा उसे कलाकार से महान कलाकार बनाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों यात्रा पर ध्यान देने से हमारी आत्म जागरूकता भी बढ़ती है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जीवन की यात्रा को महसूस करने वाला व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाता है। वो ये जान पाता है जागृति जी कि उसे क्या पसंद है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और वो अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच पाता है। साथियों
0: बिल्कुल,
1: इस तरह हम देखते हैं कि यात्रा की समझ व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी ज्यादा परिपक्व बना देती है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ध्यान को किसी लक्ष्य से न जोड़े बल्कि उसे अपनी यात्रा बना ले।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि महान व्यक्तियों के जीवन कहानियों में एक बात समान मिलती है कशिश, उन्होंने सफलता का पीछा नहीं किया, उन्होंने पूरे मन से अपने कार्य को जिया। उनका ध्यान यात्रा पर था न कि लक्ष्य पर। सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी से प्रेम करते थे, लता मंगेशकर जी संगीत में डूब जाती थी, विराट कोहली प्रैक्टिस के दौरान दुनिया भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उनके लिए खेल और संगीत लक्ष्य नहीं यात्रा थे, और यही यात्रा उन्हें महान बनाती है। साथियों, यही सिद्धांत हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो छात्र हो, कलाकार हो, व्यापारी हो या गृहिणी।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताएं तो हम देखते हैं कि यात्रा को अपनाने से जीवन अधिक सार्थक बनता है।
0: जी हाँ।
1: जैसे कि जीवन का वास्तविक अर्थ श्रोता साथियों मंजिल पाने में नहीं बल्कि रास्तों में छिपा होता है। रास्तों में लोगों से मिलना, अनुभवों से गुजरना, संघर्षों को समझना, ये सब व्यक्ति को वह बनाते हैं जो वह बनना चाहता है। जागृति जी।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जीवन केवल पाना नहीं बल्कि जीना सिखाता है दोस्तों। हम देखते हैं कि लक्ष्य के पीछे भागने वाला मन अक्सर बेचैन रहता है, पर यात्रा का आनंद लेने वाला मन काफी सुकून पाता है। वो छोटी खुशियों को पहचान पाता है, रिश्तों को समय देता है और आत्मसंतुष्टि महसूस करता है साथियों, जिससे धीरे धीरे उसके जीवन की दृष्टि सकारात्मक होने लगती है।
0: जी हाँ कशिश।
1: अब यही अगर बात करें कि यात्रा का अनुभव लक्ष्य से अधिक स्थायी कैसे होता है, तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति तो क्षणिक होती है, कुछ पल की खुशी है, पर यात्रा के अनुभव जीवन भर प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में तनावित रहता है, लेकिन यदि वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेगा तो ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगी।
0: जी हाँ।
1: वहीं एक खिलाड़ी केवल ट्रॉफी पर ध्यान दे तो दबाव बढ़ेगा, पर यदि वह अभ्यास प्रक्रिया से प्रेम करे तो उसका खेलकूद और बेहतर होगा। जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ साथियों, जैसे कि जब ध्यान लक्ष्य पर होता है तो हम काम करते समय बार बार परिणाम सोचते रहते हैं कशिश, इससे काम की गुणवत्ता कम हो जाती है। लेकिन यात्रा पर ध्यान रखने से हम हर पल को गहराई से करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिस काम में गहराई हो जाती है उसमें उत्कृष्टता जन्म लेती है। किसी भी महान कार्य का रहस्य यही है, डीप वर्क, जो केवल यात्रा आधारित ध्यान से संभव है। कशिश, कहा गया है कि लक्ष्य पूरा हुआ तो काम बंद, नया लक्ष्य आया तो फिर से तनाव शुरू।
1: जी जी।
0: साथियों, यही चक्र जीवन को थका देता है, लेकिन यात्रा ध्यान जीवन में निरंतरता लाती है।
1: बिल्कुल।
0: हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, बढ़ना और सुधारना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे निरंतरता हमारी पहचान बन जाती है। और कशिश, सफलता सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं होता है श्रोताओं, बल्कि सफलता ये है कि हम मंजिल तक पहुंचने की यात्रा को कितनी ईमानदारी, कितने प्रेम और कितनी गहराई से जीते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य पूरा कर ले और खुशी न मिले, इसका मतलब है कि वह यात्रा में ध्यान नहीं रख पाया था।
1: जी।
0: यात्रा के माध्यम से मिली सफलता गहरी होती है, उसमें स्थिरता होती है और सबसे बढ़कर वह मन को तृप्त करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। अब यही अगर बात करें कि यात्रा केंद्रित ध्यान हम कैसे विकसित करें, तो दोस्तों कुछ सरल उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। जैसे कि सीखने की प्रक्रिया आपको रोज लिखनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: छोटे छोटे कदमों का जश्न आप मनाते रहें, असफलता को अनुभव माने न कि रुकावट। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें साथियों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। साथ ही तुलना छोड़कर अपनी गति पर ज्यादा ध्यान दें।
0: बिल्कुल।
1: लक्ष्य को दिशा माने लेकिन दबाव न बनने दे श्रोता साथियों। हम देखते हैं जागृति जी की लक्ष्य हमारे युवा साथियों की जिंदगी का हिस्सा है, पर उनका महत्व तभी है साथियों जब हम रास्ते को भी खूबसूरत बना कर जिए।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति यात्रा का अनुभव लेता है वह परिणाम चाहे जो भी हो खुश, शांत और तृप्त रहता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए ध्यान को मंजिल की दौड़ में मत खो, उसे यात्रा के अनुभव से समृद्ध बनाओ।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे साथियों कि जब हम ध्यान को किसी लक्ष्य से जोड़ते हैं तो हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं, लेकिन जब हम ध्यान को ही अपनी यात्रा बना लेते हैं तो हर दिन नया, हर कदम अर्थपूर्ण और हर क्षण सुंदर बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ध्यान ही वो दीपक है जो यात्रा में प्रकाश देता है। लक्ष्य केवल मील पत्थर है, लेकिन यात्रा ही जीवन है। इसीलिए ध्यान को लक्ष्य से मत बांधिए, ध्यान को ही अपनी यात्रा बना लीजिए, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी
0: हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी दोस्त जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने कने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलेस ने हमरो ने हाथे मिलने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का
3: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
4: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
3: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
4: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
3: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
5: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम हाजिर हो गए हैं एक ऐसे ही नए विषय के साथ में। तो श्रोता साथियों आज हमारा जो नाटक रहने वाला है उसका विषय है नकल नहीं अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। श्रोता साथियों आज मैं आपसे एक ऐसा ही सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर शायद ही हर विद्यार्थी, हर माता पिता और हर शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोता साथियों अगर सफलता बिना मेहनत के मिल जाए तो क्या वह सचमुच सफलता कहलाएगी? आज के समय में अच्छे अंक लाने की होड़ बढ़ती जा रही है। कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह अच्छे नंबर आ जाएं। कुछ बच्चे घंटों मेहनत करते हैं जबकि कुछ बच्चे हैं वो शॉर्टकट खोजने लगते हैं। धीरे धीरे श्रोता साथियों यही शॉर्टकट नकल की आदत में बदल जाता है। शायद ही उस समय नकल है वो आसान रास्ता लगता है लेकिन वह केवल उत्तर पुस्तिका भरती है, जीवन नहीं बनाती। नकल से अंक मिल सकते हैं श्रोता साथियों लेकिन ज्ञान नहीं। प्रमाण पत्र मिल सकता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं। और सबसे बड़ी बात, नकल हमें कुछ समय के लिए दूसरों से आगे दिखा सकती है लेकिन जीवन की असली परीक्षा में पीछे छोड़ देती है। दूसरी ओर श्रोता साथियों मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन वह रास्ता हमें आत्मविश्वास, अनुभव और सम्मान देता है। जो बच्चा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना सीख जाता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह गिरता है, सीखता है, फिर उठता है और अंततः तो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें जरूर रहेंगी लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाई विडिपाई चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चकरदुम चिकिचकचो।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष से तो रूबरू कराई चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं नकल नहीं अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि आज के समय में अच्छे अंक लाने की होड़ है वो बढ़ती जा रही है। कई बच्चे सोचने लगते है कि किसी भी तरह अच्छे अंक आ जाए। कुछ बच्चे है वो घंटों तक मेहनत करते हैं, जबकि कुछ बच्चे शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे श्रोता साथियों यही शॉर्टकट नकल की आदत बन जाता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि दूसरी ओर मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता है वो हमें आत्मविश्वास, अनुभव और सम्मान देता है। कहना चाहूंगी कि जो बच्चा मेहनत पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। वह अपने जीवन में गिरता है, सीखता है, फिर उठता है और आखिरकार अंत में जाकर अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। तो आइए श्रोता साथियों, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ में सुनते हैं कार्यक्रम का यह नाटक।
1: अवनी, जितना पढ़ती हूँ उतना ही लगता है कि कुछ याद नहीं रहा। कल की परीक्षा सोचकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: अरे त्रिशा, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण मेहनत छोड़ देना गलत है। चलो, जिन प्रश्नों में परेशानी है उन्हें फिर से देखते हैं।
1: अब क्या होगा, पूरी किताब तो एक रात में याद तो नहीं हो सकती ना?
2: हाँ, पूरी किताब नहीं, लेकिन जरूरी बातें समझी जा सकती है। याद करने से ज्यादा समझना जरूरी है।
1: अरे सच बताऊं तुम्हें, मेरे मन में एक बात आ रही है।
2: वो क्या?
1: अगर कल थोड़ी सी नकल कर लूं, तो शायद अच्छे अंक आ जाएं।
2: त्रिशा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि नकल से मिली सफलता तुम्हें खुशी देगी?
1: नहीं, पर अवनी कम से कम अच्छे नंबर तो मिल जाएंगे।
2: अरे नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या?
1: मतलब?
2: मान लो इस बार अच्छे अंक आ भी गए, फिर अगली परीक्षा, फिर अगली कक्षा और आगे की पढ़ाई, हर बार नकल करोगी क्या? त्रिशा, नकल एक ऐसी आदत है जो शुरुआत में आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही भुला देती है।
1: लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी कम अंक आए तो?
2: कम अंक सुधारे जा सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी चली गई, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा।
1: तुम्हारी बात तो सही है, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता?
2: लगता है, हर परीक्षा से पहले लगता है, लेकिन मैं खुद से एक बात कहती हूँ, जितना सीखा है उतना ही लिखूंगी, गलत होगा तो और सीखूंगी, लेकिन झूठी सफलता नहीं चाहूंगी।
1: काश मेरे अंदर भी इतना आत्मविश्वास होता।
2: आत्मविश्वास कोई जन्म से लेकर नहीं आता है त्रिशा, यह हर दिन की मेहनत से बनता है।
1: तुम्हें कैसे इतना भरोसा है अपनी मेहनत पर?
2: भरोसा इसलिए है क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं, मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन वह हमेशा अपना होता है, और नकल का परिणाम जल्दी मिल जाता है, लेकिन वह कभी भी अपना नहीं होता।
1: आज पहली बार कोई मुझे अंकों से ज्यादा ईमानदारी की कीमत समझा रहा है।
2: हाँ, अंक जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। लोग कुछ समय बाद नंबरों को भूल जाते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा याद रहता है।
1: शायद अवनी मैं गलत सोच रही थी।
2: हाँ, और इस गलत सोच का बदल जाना ही सबसे बड़ी जीत है।
1: अवनी, रात में मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आई, बार बार यही डर लग रहा था कि अगर प्रश्न कठिन आ गए तो क्या होगा।
2: त्रिशा, डरो मत, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, जितना पढ़ा है उतना खुद पर विश्वास भी रखो।
1: लेकिन अवनी, मेरे मन में अभी भी वही चिंता है, अगर मैं अच्छे अंक नहीं ला पाई तो सब क्या कहेंगे।
2: अरे तुम हमेशा ये सोचती हो कि लोग क्या कहेंगे, कभी ये सोचो कि तुम्हारा अपना मन क्या कहेगा। अगर तुम ईमानदारी से परीक्षा देकर बाहर निकलोगी तो चाहे कम अंक ही क्यों ना आए, तुम्हारा सिर ऊंचा रहेगा।
1: बात तो तुम्हारी सही है।
2: अरे त्रिशा, ये क्या है?
1: कल रात मैंने कुछ उत्तर लिखे थे, सोचा था कि अगर भूल गई तो देख लूंगी।
2: तो अभी भी तुम दो रास्तों के बारे में सोच रही हो?
1: दो रास्ते?
2: हाँ, दो रास्ते। पहला रास्ता ये कि इस कागज के भरोसे परीक्षा दोगी, और दूसरा रास्ता ये कि अपने ज्ञान और अपनी मेहनत के भरोसे परीक्षा दोगी। अब सोचो, फैसला तुम्हें ही करना है।
1: अगर मैं इसे फेंक दूं और प्रश्न कठिन आ गए
2: तो तुम उतना लिखोगे जितना तुम्हें आता है। लेकिन अगर ये कागज साथ लेकर गई और पकड़ी गई तो केवल परीक्षा नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी हार जाएगा।
1: अवनी, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं प्रश्नों से नहीं अपने डर से हार रही हूँ।
2: हाँ त्रिशा, याद रखो, सबसे बड़ी जीत डर पर जीत होती है।
1: बस आज के बाद मैं कभी नकल नहीं करूँगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। अगर सफल हुई तो अपनी मेहनत से, और अगर असफल हुई तो अपनी गलती सुधार कर फिर से मेहनत करूंगी। लेकिन झूठी सफलता कभी नहीं चाहूंगी।
2: बिल्कुल, यही बात तो मैं सुनना चाहती थी। याद रखना, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता त्रिशा। उसे या तो सफलता मिलती है या अनुभव, और दोनों ही जीवन में बहुत काम आते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अवनी तुम्हारा। तुमने मुझे उत्तर नहीं सिखाया, तुमने मुझे सही रास्ता चुनना सिखाया है।
2: हाँ, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता दिखाए।

0: तो त्रिशा, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा?
1: सच कहूं, कुछ प्रश्न बहुत अच्छे हुए, कुछ नहीं आए, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि मैंने आज अपनी मेहनत पर भरोसा किया है। जब एक दो कठिन प्रश्न आए तो एक पल के लिए लगा कि अगर वह पर्ची साथ होती तो शायद उत्तर लिख देती। लेकिन अगले पल मुझे तुम्हारी बात याद आ गई कि झूठी सफलता कभी सच्ची खुशी नहीं देती।
0: और फिर क्या हुआ?
1: फिर मैंने जितना आता था उतना लिखा। कुछ उत्तर पूरे थे, कुछ अधूरे, लेकिन हर शब्द मेरा अपना था, किसी और का नहीं।
0: बिल्कुल त्रिशा, मुझे तुम पर गर्व है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
1: आज मुझे समझ में आया अवनी कि परीक्षा केवल किताबों की नहीं होती, हमारे चरित्र की भी होती है।
0: बिल्कुल, कई बार हमें जीवन ऐसे मोड़ पर भी लाकर खड़ा कर देता है जहाँ सही और आसान में से हमें किसी एक को चुनना पड़ता है।
1: हाँ बिल्कुल, पहले मैं सोचती थी कि अच्छे अंक ही सब कुछ हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अगर अंक ईमानदारी से मिले तभी उनका मूल्य होता है।
0: बिल्कुल, याद रखो, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर परिणाम आज नहीं मिला तो कल तो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत से मिला तो आत्मविश्वास जीवन भर साथ रहता है।
1: और नकल?
0: नकल? नकल तो कुछ मिनटों की राहत दे सकती है, लेकिन वह सीखने की क्षमता को कमजोर कर देती है।
1: आज से मैं अपने छोटे भाई बहनों को समझाऊंगी कि उन्हें कभी भी शॉर्टकट अपनाना नहीं है, हमेशा पूरी मेहनत से अपना काम करना है।
0: बहुत अच्छा त्रिशा, जब एक बच्चा सही रास्ता चुनता है ना, तो वो अपने साथ कई बच्चों को भी प्रेरित करता है।
1: अवनी, धन्यवाद। अगर उस दिन तुम मुझे रोकती नहीं तो शायद मैं आज भी यही सोचती कि नकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मुझे अपने अंकों से ज्यादा अपने फैसले पर गर्व है।
0: और मुझे तुम पर, क्योंकि असली सफलता परीक्षा में नहीं अपने मन पर जीत हासिल करने में है।
1: आज मैं खुद से एक वादा करती हूँ कि मैं जीवन की हर परीक्षा अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने आत्मविश्वास के दम पर ही दूंगी।
0: हाँ, और यही वादा तुम्हें जीवन में सबसे आगे ले जाएगा। चलो अब घर चलते हैं।
1: चलो।
2: श्रोता साथियों, आज की कहानी केवल दो बच्चियों की नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी थी जो कभी न कभी सफलता और शॉर्टकट के बीच चुनाव करते हैं। नकल कभी भी ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकती, वह कुछ समय के लिए श्रोता साथियों अच्छे अंक दिला सकती है, लेकिन वह सोचने, समझने और आगे बढ़ने की क्षमता ही उसको कमजोर कर देती है। दूसरी ओर श्रोता साथियों, मेहनत का रास्ता कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही रास्ता आत्मविश्वास, सम्मान, सच्ची सफलता तक हमें पहुंचाता है। श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि हमें बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि गलती करना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब हम सीखना छोड़ देते हैं। यदि किसी परीक्षा में अंक कम आए तो उसे अपनी मेहनत बढ़ाने का अवसर समझें, न कि गलत रास्ता चुनने का कारण। श्रोता साथियों, माता पिता और शिक्षक भी बच्चों पर केवल अधिक अंक लाने का दबाव न डालें। उसकी ईमानदारी, प्रयास और सीखने की इच्छा की भी उतनी ही प्रशंसा करें। जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनका मूल्य केवल अंकों से नहीं बल्कि उनके चरित्र से ही, तभी वे सही रास्ता चुनने का सांस रखते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, सच्ची सफलता वही है जिसमें मेहनत हो, ईमानदारी हो और आत्मविश्वास हो। जो बच्चा अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे किसी नकल, किसी शॉर्टकट और किसी गलत रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है श्रोता साथियों कि उसकी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जब वह वहां पहुंच जाएगा तो उसके कदमों में आत्मविश्वास होगा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होगी। तो आइए श्रोता साथियों, हम सभी आज ये संकल्प लें, नकल नहीं करेंगे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, गलत रास्तों से मिलने वाली आसान सफलता की बजाय सही रास्ते से मिलने वाली सच्ची सफलता को चुनेंगी और अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास की मजबूत नींव को खड़ा करेंगे। याद रखिए साथियों, मेहनत से लिखा हुआ हर उत्तर नकल से लिखे हुए पन्नों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अंक कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। इसीलिए श्रोता साथियों, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही भरोसा एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपसे जो भी बातें रही, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिमे हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाइन बुनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरा वारा हंग्र किसान भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। आप सब हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु घणे मान स्वागत कर रहा हूं हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के किसान भाई बुन आप सब जानो सो कि हमें कार्यक्रम खेतीवाड़ी में घना का निवात कर रहा हूँ। अपने प्रकृति तकी जुड़ी हरते आपड़ा क्षेत्र में नवी नवी चीजें ने अपनावी ने घना का ध्यान राखी ने अपनी खेती ने असल तरीका तकी करी शको। तो आज भी किसान भाई बुन अमे आप तकी बात करवा वा रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती ने आप हरते अपनावी शको आनु हो महत्व है ने आना कया कया सिद्धांत है जेना ने ध्यान में रखते तके अगर आपने प्राकृतिक खेती करा हा तो इनमें अपने अच्छो मुनाफो मिले है ने अपनी जे भूमि है अपनी जे मिट्टी है इनी उर्वरा जे क्षमता है ई भी वधे है। तो कार्यक्रम में किसान भाई बोन अणा विषय माते अपने वात घणा कनी करंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले अपने हामरी लागी मोरे करा अपनी वाते। तो किसान भाई बोन आप हमर तरो आपड़ो रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: એટલે આપણે હામરાયણાની વાતે ને મોરેકર આપણી વાતે. નમસ્કાર સર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકો બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ હમ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કી આપ હમારી કાર્યક્રમ સે જુડતે હૈ ઓર હમારી કિસાન ભાઈ બહેનો કો બહોત અચ્છી જાનકારી દેતે હૈ, તો યહી સર આજ હમ આપસે જાનના ચાહતે હૈ કી પ્રાકૃતિક ખેતી ક્યા હૈ, કિસ તરીકે સે ઇસકા મહત્વ હૈ, ક્યા ઇસકે સિદ્ધાંત હૈ ઓર કિસ તરીકે સે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન ઇસ ખેતી કો અપના સકતે હૈ.
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. यदि अपन प्राकृतिक खेती को समझे तो प्राकृतिक खेती वो है कि जो कीटनाशक के रूप में जो गोबर है, खाद है, कंपोस्ट है, जीवाणु खाद है,
0: जी जी,
1: फसल के जो अवशेष है जो बचे हुए रह जाते हैं वो, और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिया जाता है.
0: जी जी,
1: इसी को ही प्राकृतिक खेती अपन बोलते हैं. मतलब प्राकृतिक खेती में उपलब्ध जो जीवाणु है,
0: जी जी,
1: मित्र कीट है, और जैविक कीटनाशक द्वारा जो फसल को हानिकारक जीवाणु से बचाया जाता है,
0: जी जी बिल्कुल,
1: उसी को प्राकृतिक खेती अपन बोलते हैं.
0: जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति में जो भी हमें उपलब्ध चीजें हैं उसको हम संभाल कर रखे और उसको कैसे हम काम में ले सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसी को हम प्राकृतिक खेती,
1: उसी को प्राकृतिक खेती बोलते हैं.
0: जी बिल्कुल,
1: इसके अंदर अलग से कोई जैसे रासायनिक डीएपी यूरिया कीटनाशक ऐसा कभी प्रयोग नहीं किया जाता है.
0: जी बिल्कुल. तो सर जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती किसे कहते हैं, यही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या महत्व है.
1: बिल्कुल, प्राकृतिक खेती का महत्व ये है कि देखो ये इसमें ऐसा होता है कि काफी वर्षों से खेती में नुकसान अपन को देखने को मिल रहा है.
0: जी जी,
1: उसका मुख्य जो कारण है ना कि हानिकारक कीटनाशक एवं ये रासायनिक खादों का उपयोग, इससे क्या किसान की लागत बढ़ जाती है.
0: जी बिल्कुल,
1: पहला तो वो कारण है कि भी अपने क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी. दूसरी बात यह है कि भूमि के जो प्राकृतिक स्वरूप में जो भी बदलाव हो रहा है इससे काफी नुकसान, मतलब अपन को ये लग रहा है कि काफी नुकसान भरे हो सकता है.
0: जी जी,
1: जो अभी जलवायु परिवर्तन अपन को देखने को मिल रहा है, जमीन के अंदर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सब चीज रासायनिक खेती से प्रकृति में और मनुष्य में स्वास्थ्य को काफी गिरावट कर रहा है.
0: जी बिल्कुल,
1: मतलब अपन को पता है कि 30-40 साल पहले जो बीमारियां नहीं सुनी थी आज नई नई बीमारियां आ रही है, कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है.
0: जी हाँ.
1: तो ये इसीलिए प्राकृतिक खेती अपन को जरूरी है यहाँ पर.
0: जी बिल्कुल सर, हम कह सकते हैं हमारे किसान भाई बहनों से कि अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमारी खेती में हमें बहुत सारे लाभ पहुंचते हैं, साथ ही हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता
1: है. वो अच्छा रहता है.
0: जैसा कि सर आपने बताया कि अगर हमारे किसान भाई बहन रासायनिक खेती करते हैं तो इससे हमारा जो वायुमंडल है उस पर भी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते
1: हैं.
0: तो इस तरीके से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ सकते हैं और उसे कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं.
1: और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसके अंदर जो किसान कमाता है,
0: जी बिल्कुल,
1: उसमें आधा हिस्सा तो मतलब यूं समझ लो कि रासायनिक खाद और दवाई में चला जाता है.
0: जी बिल्कुल सर,
1: मतलब उसको किसान को कुछ बेनिफिट तो मिलता ही नहीं है. और प्राकृतिक खेती होगी तो लगभग पूरे पूरा उसके घर पे आमदनी
0: आएगी. जी बिल्कुल सर.
1: तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसीलिए अपन को प्राकृतिक खेती की आवश्यकता यहाँ पर अपन को जरूरी है कि भी किसान का जो ज्यादा मुनाफा है उसका जो बेनिफिट है वो इससे ही अपन को मिल रहा है. इसके साथ क्या है कि जैसे अपन और चीज अपन देखते हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो उपयोग है उसमें मिट्टी की उर्वरकता क्षमता काफी कम हो गई है.
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा. और हम देखते हैं और हम यही बात करते हैं हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो हम वही हमारे किसान भाई बहनों को कहते हैं कि गेहूं की खेती के बाद वो एक दलहनी फसल करे,
1: बिल्कुल,
0: जिससे उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़े. तो वहीं अगर हमारे किसान भाई बहन अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें प्राकृतिक खेती को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाना होगा, जिससे उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जब भी वो किसी चीज की फसल कर रहे हैं तो उसका उत्पादन उन्हें अच्छी तरीके से मिल पाएगा.
1: बिल्कुल, इसीलिए अपन को इसकी ज्यादा आवश्यकता.
0: जी बिल्कुल. तो सर हम आपसे यहीं पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो उसके सिद्धांत क्या हो सकते हैं.
1: हाँ, प्राकृतिक खेती के जो अपन सिद्धांत की बात करें है ना, तो इसके मुख्यतः चार सिद्धांत है.
0: जी बिल्कुल.
1: पहला सिद्धांत यदि अपन देखें तो खेतों में कोई जुताई नहीं करना और न ही मिट्टी पलटना. प्राकृतिक खेती में क्या होता है जैसे बड़े बड़े जो ट्रैक्टर से हल चलाते हैं
0: जी जी
1: और इसमें प्लॉइंग करते हैं, तो ये प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का ज्यादा ट्रैक्टर से औजारों से कोई काम नहीं करना चाहिए.
0: जी बिल्कुल.
1: उससे क्या धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ के प्रवेश करके केचुओं और छोटे जो प्राणियों सूक्ष्म जीवाणु है उसके जरिए वो ले लेती है.
0: जी बिल्कुल.
1: तो ये प्राकृतिक खेती का पहला सिद्धांत है. यदि दूसरा सिद्धांत की अपन बात करें तो किसी भी तरह की अपन तैयार खाद की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाए, मतलब

0: जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि यूरिया, डीएपी, जो मानव ने बनाई हुआ खाद है, पेस्टिसाइड, इसका प्राकृतिक खेती में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। यदि अपन आगे तीसरा सिद्धांत की बात करें कि निराई गुड़ाई न की जाए, न तो हल से न कोई औजार से, मतलब प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक रूप से ही उसको इसका उपयोग होना चाहिए। खरपतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने का तथा जैव बिरादरी में संतुलन स्थापित करने का प्रमुख भूमिका निभाता है। खास करके इसके अंदर जो खरपतवार है वो उसका खाद बनाने का महत्वपूर्ण काम करता है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये बुनियादी सिद्धांत यही है कि खरपतवार को भी अपन दवाइयों से उससे जो नष्ट कर देते हैं, के अंदर प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार का दवाई से खरपतवार को नष्ट नहीं करना है।
1: जी बिल्कुल,
0: ये उसका तीसरा सिद्धांत है। यदि अपन बात करें चौथे सिद्धांत की, तो रसायनों पर बिल्कुल निर्भर न करना है। रासायनिक जो भी दवाई है, खाद है, इसके ऊपर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो ये उसका चार सिद्धांत की अपन जो बात करते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। ये जो चार सिद्धांत हैं वो अगर हमारे किसान भाई बहन ध्यान में रख लेंगे तो उनका जो प्राकृतिक खेती की जो आवश्यकता महत्व को आज हम महसूस कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी किसान भाई बहन रासायनिक खेती के ऊपर आश्रित रहता है तो उससे उनका उत्पादन कम होता है, साथ ही उनकी मिट्टी जो है वो बंजर बन जाती है,
0: बिल्कुल
1: उसमें कोई और चीज का उत्पादन हो ही नहीं पाता है। और वहीं अगर हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल बहुत सारे फायदे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के क्या क्या फायदे हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्राकृतिक खेती के अपन यदि लाभ की बात करें तो अपन अलग अलग लाभ अपन बता सकते हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि किसान की दृष्टि से क्या लाभ है, यदि किसान की दृष्टि से अपन देखें तो कि उसकी भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: किसान की सिंचाई के अंतराल में वृद्धि हो जाती है। सिंचाई, जो रासायनिक खाद डालोगे तो आपको बार बार
1: पानी डालना पड़ेगा,
0: और इसका अंतराल आप में वृद्धि हो सकती है, सिंचाई कम लागत लगेगी।
1: जी जी।
0: रासायनिक खाद पर निर्भरता बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि लागत कम होगी किसान की।
1: जी बिल्कुल,
0: मेन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी प्राकृतिक खेती में, और बाजार में जैविक उत्पादों जो की मांग बढ़ रही है, खास करके अपन सब जानते हैं आजकल ऑर्गेनिक जो अनाज की बात करते हैं, प्राकृतिक अनाज की बात करते हैं, तो इसके अंदर मांग बढ़ रही है, तो इसका उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, और किसान की आय में मैक्सिमम अपन देखते हैं तो किसान की आय में ज्यादा वृद्धि हो सकती है।
1: जी बिल्कुल सर,
0: तो ये तो किसान की दृष्टि से लाभ हुआ, लेकिन अपन देखें कि मिट्टी की दृष्टि से क्या लाभ हो रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो मिट्टी की दृष्टि से अपन देखें तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है, और अपन जानते हैं कि रासायनिक खाद दवाई का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ती है, जमीन कठोर हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है, जमीन मतलब एकदम आगे जाके कुछ भी नहीं पैदा होता है। तो जैविक खाद से एक तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, और भूमि से पानी का बाष्पीकरण कम हो जाता है, मतलब जो पानी उड़ जाता है वो प्राकृतिक खेती में बिल्कुल पानी नहीं उड़ता है और उसके अंदर नमी बनी रहती है।
1: जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती के किसान भाई बहनों को ढेर सारे फायदे हैं।
0: बिल्कुल, और दूसरी चीज अपन देख सकते हैं भी पर्यावरण दृष्टि से भी बेनिफिट है। पर्यावरण दृष्टि से भी अपन देखें तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पानी के जल स्तर अपन बढ़ जाता है, मिट्टी खाद पदार्थ जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण है, अपन देखते हैं कि भी अलग अलग जगह जो प्रदूषण बढ़ रहा है मिट्टी के अंदर, खाद के अंदर, जमीन के अंदर, तो वो प्रदूषण में कमी आ जाती है।
1: जी बिल्कुल सर, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो इससे हमारा वातावरण भी सही रहता है, हमारे किसान भाई बहनों की आमदनी भी बढ़ जाती है, साथ ही उनकी जो मिट्टी है वो भी सही रहती है।
0: बिल्कुल, मिट्टी सही रहती है, उसका जो भी फल है, फल एकदम बिना दवाई वाला होगा तो एकदम बीमारी नहीं लगेगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ये सब चीज प्राकृतिक खेती में बहुत सारा ढेर सारा फायदा है, अपन को स्वस्थ रखता है, जमीन स्वस्थ रहती है, और प्रकृति स्वस्थ रहती है, प्रकृति भी अपने आप में उसका संतुलन बना रहता है। बाकी अपन देखते हैं कि भी जलवायु परिवर्तन देख बार बार अपन सुनते हैं कि भी बारिश एक साथ आ जाती है, अनियमित बारिश आ जाती है, तो ये सभी काम जो है वो रासायनिक खाद और दवाई से हैं, तो प्राकृतिक खेती अपनाना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती कर सकते हैं जिससे उन्हें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, तो सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सेम की किसान भाई बहन अवड़े अपने वेस्ट में પટેલ સર જોડે તક કહ્યો હતો અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકાથી બતાડ્યું હૈ કે આ પ્રાકૃતિક ખેતીનું શું મહત્વ હૈ હરતે આ આપણે બદલે ઘણી જરૂરી હૈ કેમ કે આપણે દેખ હ કે અવડે નો જો ટેમ હૈ ઇનમે ઘણા જે મનક હૈ એ જૈવિક ચીજોને પસંદ કરે હૈ તો એવમે આપણને જૈવિક ખેતી કરવું ઘણું જરૂરી થઈ જાય છે આપણે પ્રકૃતિમાં જે ચીજે હૈ જે ખુદ થકી થાય હૈ એ કરવું આપણે બદલે ઘણું જરૂરી હૈ કેમ કે આપણે દેખ હ કે ઘણા એવા જે મનક હૈ એ ખેતરમાં રાસાયણિક ચીજોનો ઉપયોગ કરીને જલ્દી તકી એ ચીજે કરવા જાય હૈ એવામાં એ ચીજે આપણને જલ્દી તો મળી જાય હૈ પણ એક ટાઈમ એવું આવે હૈ જે વખત આપણને એમાં ઘણું નુકસાન થાય હૈ આપણી જે મિટ્ટી હૈ એ બંજર થઈ જા ને આપણે કઈ બી અગર ઉત્પાદન કરવા જ તો એમાં આપણને હોજે ઉત્પાદન નથી મળતું ને એને સાથે આપણે જે રાસાયણિક ખેતી કરા હ તો એમાં આપણને બીજ લાવવાનું રાસાયણિક જે ચીજે આવે એ લાવવામાં ઘણો પૈસો લાગી જા ને એવામાં આપણે ખેતી કરવાને જે ઉત્પાદન મળે એમાં આપણે ઉપર પેટે કારે નથી આવી શકતા ને અગર આપણે જેવી ખેતી કરા હ તો એમાં આપણું કાંઈ નથી લાગતું આપણે જે પ્રકૃતિમાં જે બી ચીજે હૈ એને આપણે કામમાં લ હ તો એમાં આપણે વધારે લાગત નથી લાગતી ને આપણે જે ખેતી કરી રહ્યા એમાં આપણને ઉત્પાદન બી ઓછું મળી જા ને આપણી જે આર્થિક સ્થિતિ હૈ એ બી મજબૂત થઈ જા તો કિસાન ભાઈ બુન વાત જ આપણે કાર્યક્રમમાં આપણે ઘણા કની થઈ ગઈ હૈ ને હવે ટાઈમ બી થઈ રહ્યું હૈ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનું તો આપણે સૂટો પડા એને પહેલા આપણા હામરીલા ગીત મોરે પડા સૂટો

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, तो अधिकांश लोग धन, दौलत, घर, नौकरी या प्रतिष्ठा का नाम ले सकते हैं। लेकिन अंजलि, वास्तव में इन सभी से पहले जिस संपत्ति की आवश्यकता होती है और वो है स्वास्थ्य की।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही जीवन की हर उपलब्धि का आधार है। अगर शरीर रोगग्रस्त हो, तनाव से भरा हो और जीवन शैली असंतुलित हो, तो सबसे बड़ी सफलता भी आनंद नहीं दे पाती। इसलिए साथियों, ये कहना बिल्कुल उचित है कि स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आज का समय जो है वो तेजी से बदल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिक सुविधाओं ने जीवन को आसान तो बनाया है और लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी दी हैं। तो आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी कि किस तरीके से स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य हमारा बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में और हमारी बातें चल रही थी स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य को लेकर। तो अंजलि, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। अगर मनुष्य के पास अपार धन दौलत ऊंचा पद और बहुत सारी सुविधाएं हों लेकिन उसका शरीर और मन स्वस्थ न हो तो वो उन सभी उपलब्धियों का आनंद नहीं ले पाता है। दूसरी ओर एक स्वस्थ व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी खुशहाल आत्मविश्वासी और सफल जीवन जी सकता है।
1: जी जी,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और जैसा कि हमने गीत से पहले कहा भी था कि आज का जो समय है वो तेजी से बदल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आधुनिक सुविधाओं ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी दी हैं। अनियमित दिनचर्या, जंक फूड, बढ़ता प्रदूषण, तनाव, मोबाइल और स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में स्वस्थ जीवन अपनाना केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी मानी जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य केवल एक नारा नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए एक आवश्यक संकल्प है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा अंजलि, तभी परिवार सुखी होगा और समाज समृद्ध होगा, राष्ट्र सशक्त बनेगा। श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई डॉक्टर बनना चाहता है अंजलि, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कोई किसान बनना चाहता है। लेकिन इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जाता है कि यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन की हर कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक होता है, वह अपने परिवार, समाज और देश के लिए बेहतर योगदान दे सकता है। दूसरी ओर जागृति जी, हम देखते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति की ऊर्जा, समय और संसाधनों का जो बड़ा भाग है वह केवल उपचार पर ही खर्च हो जाता है। स्वास्थ्य केवल श्रोता साथियों बीमारी का अभाव नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और प्रसन्न रहने की अवस्था है। जागृति जी, जब शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और विचार सकारात्मक होते हैं तभी जीवन वास्तव में सुखद बन पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि, अक्सर हम तब स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं जब कोई बीमारी हमें घेर लेती है, लेकिन श्रोताओं, समझदारी इसी में है कि हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिससे बीमारियां उत्पन्न ही न हो। नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करें। ये सारी छोटी छोटी अगर आदतें हम अपनाएंगे तो भविष्य की बड़ी समस्याओं से हम बच सकते हैं।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, स्वास्थ्य पर किया गया हर छोटा प्रयास भविष्य में बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है और यही कारण है अंजलि कि कहा जाता है कि रोकथाम उपचार से बेहतर है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर और स्वास्थ्य बनता जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज स्वाद के पीछे भागते भागते श्रोता साथियों हमने पोषण को पीछे छोड़ दिया है। फास्ट फूड, अधिक तेल, चीनी और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत जागृति जी, हम देखते हैं कि स्थानीय और मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, मोटे अनाज और पर्याप्त पानी शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि शरीर को ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घायु देने का माध्यम भी है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन सुरक्षित भविष्य को लेकर। ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे कि किस तरीके से स्वस्थ जीवन हमारे लिए सुरक्षित होता है, यही अब बात आती है जागृति जी मानसिक स्वास्थ्य की। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि आज का जीवन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चुनौतियों से भी भरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अकेलापन और डिजिटल दुनिया में बढ़ती निर्भरता ने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है श्रोता साथियों कि हम अपने परिवार मित्रों के साथ समय बिताएं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, ध्यान करें, सकारात्मक साहित्य पढ़ें और प्रकृति के बीच कुछ समय अवश्य बिताएं। मुस्कुराना, संवाद करना और आशावादी दृष्टिकोण रखना भी मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण दवा है।
1: बिल्कुल अंजलि, प्रकृति हमें अनुशासन का सबसे बड़ा संदेश देती है। सूरज समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती है। उसी प्रकार श्रोताओं, यदि हमारा जीवन भी नियमित हो तो स्वास्थ्य बेहतर रहता है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना शरीर को संतुलित रखता है। हम देखते हैं अंजलि कि देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और लगातार स्क्रीन देखना, ये सारी चीजें धीरे धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ तंबाकू, शराब और अन्य नशीली पदार्थ व्यक्ति के शरीर, मन और परिवार और समाज सभी को प्रभावित करता है। नशा केवल स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ता दोस्तों, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देता है।
0: बिल्कुल,
1: विशेष रूप से हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को समझना होगा कि वास्तविक आधुनिकता नशे में नहीं श्रोताओं, बल्कि स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जीने में है। नशा मुक्त युवा ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी है।
1: बिल्कुल,
0: स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, साफ कपड़े, कचरे का उचित प्रबंधन और हरियाली स्वस्थ जीवन के आवश्यक आधार माने जाते हैं। यदि हम अपने घर, विद्यालय, गांव और शहर को स्वच्छ रखते हैं श्रोता साथियों, तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना वास्तव में अपने स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है।
1: बिल्कुल,
0: आज जागृति जी तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग आवश्यक है। घंटों मोबाइल पर समय बिताना, देर रात तक स्क्रीन देखना और शारीरिक गतिविधियों की कमी बच्चों और युवाओं दोनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। हमें तकनीक का उपयोग श्रोता साथियों ज्ञान और विकास के लिए करना चाहिए, लेकिन उसके साथ खेल, पुस्तकें, परिवार और प्रकृति के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वस्थ आदतें बचपन से ही हमारे अंदर विकसित होती है। अगर परिवार में पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है तो बच्चे भी इन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि विद्यालय, पंचायत, सामुदायिक संस्थाएं और स्वास्थ्य विभाग मिलकर अगर जागरूकता अभियान चलाएं तो पूरे समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। अगर युवा शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से संतुलित और नैतिक रूप से जागरूक होंगे तो राष्ट्र का भविष्य स्वतः ही सुरक्षित होगा।
0: जी हाँ,
1: स्वस्थ युवा बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, अधिक उत्पादक होंगे, नए विचारों का सृजन करेंगे और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि छोटी छोटी हमारी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। स्वस्थ जीवन के लिए श्रोता साथियों बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है बल्कि छोटी आदतें ही काफी होती हैं। प्रतिदिन समय पर उठना, पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना, स्वच्छता बनाए रखना, तनाव को नियंत्रित रखना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहना और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना, इन्हीं छोटी आदतों से जागृति जी एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं है बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा तो परिवार खुशहाल होगा, समाज मजबूत बनेगा और राष्ट्र समृद्ध बन पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन किसी एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि जीवन भर अपनाई जाने वाली जीवन शैली है। अगर केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार बनता है। आज यदि हम संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति, स्वच्छता, नशा मुक्त जीवन और पर्यावरण संरक्षण जैसी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो आने वाला कल निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित, सुखद और समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, दूसरों को भी स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करें और ऐसी संस्कृति विकसित करें जहां स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक समृद्धि का प्रतीक बने। याद रखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार की ताकत होता है, स्वस्थ परिवार समाज की शक्ति बनता है और स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण करता है। अंजलि
0: जी, जी,
1: इसीलिए स्वस्थ जीवन को अपनाइए क्योंकि यही सुरक्षित भविष्य की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी गारंटी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं, स्वस्थ विचारों से सशक्त समाज बनता है और सशक्त समाज से ही सुरक्षित भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य को अपनी आदत बनाइए, अनुशासन को अपना साथी बनाइए और ऐसा भविष्य गढ़ें जहां हर घर स्वस्थ हो, हर परिवार खुशहाल हो और हर नागरिक यह गर्व से कह सके कि स्वस्थ जीवन ही सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, जिसके स्वास्थ्य लाभ क्या है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे हमारी संस्कृति जो है वो हमें प्रकृति और स्वास्थ्य तीनों से जोड़ती है। आदिवासी समाज जो है वो सदियों से जंगल के साथ मिलकर जीवन जिताया है।
0: बिल्कुल,
1: उनके लिए जंगल मनीषा केवल लकड़ी, फल या ईंधन का स्रोत नहीं है, बल्कि एक जीवन साथी है। जंगल उन्हें भोजन देता है, औषधियाँ देता है, स्वच्छ हवा देता है और स्वस्थ जीवन जीने की सीख भी देता है। आधुनिक विज्ञान आज जिन बातों पर शोध कर रहा है उनमें से कई बातें आदिवासी समुदाय वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर अपनाते आए हैं। तो आज हम जानेंगे जंगल से जुड़ा यह पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे अंजलि जी, तभी हम देखते हैं कि मानव जीवन है वो सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। वे मौसम के अनुसार भोजन बदलते हैं, स्थानीय फल फूल और कंदमूल खाते हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग करते हैं और शारीरिक श्रम को जीवन का हिस्सा मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी कारण मनीषा उनके जीवन में प्रकृति और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहता है। वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए दवा से पहले सही भोजन, स्वच्छ वातावरण और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। जंगल अनेक प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ का खजाना है। महुआ के फूल, तेंदू, जामुन, बेर, आंवला, बेल, सीताफल, इमली, शहद, बांस की कोपले, अलग अलग प्रकार की पत्तेदार सब्जियां और कंदमूल शरीर को आवश्यक पोषक प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर मजबूत बनता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय विभिन्न औषधियों की पहचान और उनके उपयोग में अत्यधिक दक्ष होते हैं। वे मौसम, पौधों की आयु, पत्तियां, जड़ें और छाल और उनके गुणों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उनके अनुसार किसी भी जड़ी बूटी का सही समय पर संग्रहण, उचित मात्रा में उपयोग ही प्रभाव को बढ़ाता है। यह ज्ञान श्रोता साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज सामान्य बीमारियों का उपचार जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों से ही करते हैं। बुखार के लिए कुछ विशेष पौधों की पत्तियों का काढ़ा वे बनाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सर्दी खांसी में तुलसी, अदरक, काली मिर्च वनस्पतियों का उपयोग वे करते हैं। घाव भरने के लिए श्रोता साथियों औषधीय पत्तियों का लेप वे बनाते हैं। पेट दर्द में श्रोता साथियों कड़वी जड़ों या प्राकृतिक बीजों का उपयोग वे करते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि त्वचा के रोगों में नीम, करंज या अन्य औषधीय पौधों का वे उपयोग करते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इन उपचारों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग होने से कई बार दुष्प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, लेकिन श्रोता साथियों गंभीर बीमारी से परीक्षित होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेकर उनके अनुसार हमें अपने स्वास्थ्य की जाँच करवानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय अनेक औषधीय पौधों की पहचान रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: गिलोय, नीम, तुलसी, अर्जुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अश्वगंधा, काल मेघ, अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग बुखार, सर्दी खांसी, पेट दर्द, घाव, त्वचा संबंधित समस्याओं में करते आए हैं। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज हर मौसम के अनुसार खान पान बदलता है। गर्मी में ठंडक देने वाले फल और पेय, वर्षा ऋतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले अनाज और बीजों का सेवन किया जाता है। इससे शरीर मौसम के बदलाव के अनुसार स्वयं को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जंगल से लकड़ी लाना, खेती करना, पैदल चलना, पशुपालन और अन्य दैनिक कार्य आदिवासी जीवन का हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: इसमें अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका पूरा दिन सक्रिय रहता है। यही कारण है कि नियमित शारीरिक गतिविधि उनके स्वास्थ्य का मजबूत आधार बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि जंगल का स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा और हरियाली मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती है।
1: हाँ।
0: प्रकृति के बीच रहने से श्रोता साथियों मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आदिवासी भोजन में मोटे अनाज, स्थानीय दालें, मौसमी सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं। कम तेल, कम मसाले और ताजा भोजन पाचन को बेहतर बनाता है और जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा भी कम करता है।
1: बिल्कुल।
0: आदिवासी समाज वर्षों से प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा करता आया है। स्वच्छ पानी का महत्व वे भली भांति समझते हैं। जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल का संरक्षण और पानी का सीमित उपयोग उनके जीवन का हिस्सा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है। इसी के साथ आदिवासी समुदाय में सामूहिक जीवन की परंपरा मजबूत होती है। मनीषा, खुशी और दुख दोनों में पूरा समुदाय साथ खड़ा होता है।
1: हाँ।
0: यह सामाजिक सहयोग तनाव कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जंगल वो प्राकृतिक रूप से वायु को शुद्ध करते हैं। आदिवासी समाज जंगलों की सफाई बनाए रखने में, पेड़ों की अनावश्यक कटाई, साथ ही आग से बचाने में विशेष ध्यान रखते हैं। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही श्रोता साथियों, प्राकृतिक वातावरण मन को शांति देता है। आदिवासी समाज में संगीत, लोक नृत्य, सामूहिक जीवन, त्योहार और प्रकृति के साथ समय बिताने की परंपरा है, वो हमारे तनाव को कम करने में मदद करती है। आज वैज्ञानिक भी श्रोता साथियों यह मानते हैं कि हरियाली और प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है।
0: जी हाँ मनीषा, यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो औषधीय पौधे, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और पौष्टिक भोजन भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जंगल बचाना केवल पर्यावरण बचाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। स्थानीय और मौसमी भोजन को हमें अपनाना है। इसी के साथ हमें नियमित शारीरिक श्रम करना है, जंगलों और जैव विविधता की रक्षा करनी है, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना है और इसी के साथ बुजुर्गों से स्थानीय औषधीय और खाद्य पदार्थों की जानकारी हमें लेनी है।
1: जी बिल्कुल,
0: प्रकृति हमें हर दिन यह सिखाती है श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलन जरूरी है। आदिवासी समाज का पारंपरिक ज्ञान हमें बताता है कि यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज तीनों मजबूत होगा।
1: जी हाँ।
0: आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक अनुभव एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि यही समझ के साथ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसलिए किसी भी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति केवल उसकी इमारतें या तकनीक नहीं होती बल्कि उनका अनुभव और जीवन जीने की समझ होती है।
1: जी हाँ।
0: आदिवासी समुदाय श्रोता साथियों जंगलों के बीच रहते हुए ये साबित करते हैं कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित संबंध, पौष्टिक भोजन और सामूहिक जीवन और नियमित श्रम और पर्यावरण के सम्मान से मिलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अमूल्य पारंपरिक ज्ञान को केवल अतीत की विरासत न माने बल्कि वर्तमान भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखें।
1: जी
0: जब
1: हाँ।
0: हम जंगलों की रक्षा करते हैं, स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं और आदिवासी समुदाय के अनुभवों को सीखेंगे, तब हम केवल अपनी सेहत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित जीवन की नींव रखेंगे। प्रकृति के साथ जुड़ाव ही मनीषा स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी आदिवासी जीवन से कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकती है। प्राकृतिक भोजन को अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, नियमित शारीरिक श्रम को अपनाना, साथ ही स्वच्छता बनाए रखना, पेड़ों का सम्मान करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान केवल इतिहास ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक जीवंत प्रेरणा भी है।
0: बिल्कुल।
1: यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति, संतुलित भोजन, नियमित श्रम, स्वच्छ पर्यावरण और सामुदायिक सहयोग से प्राप्त होता है। यदि हम इस ज्ञान का सम्मान करते हुए श्रोता साथियों जंगलों का संरक्षण करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जिए, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य छोड़कर जाएंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावारा अमर हित्ता भाई बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलिनु
0: राम राम, राम। होवे भाईन बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नो स्वागत करे हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाईन बोनो लेने हाजिर थे गये हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज कार्यक्रम में अपने भाईन बोनो थी की बातचीत नो विषय है कि सामूहिक जो श्रमदान की परंपरा हती ई केम खत्म थती जई रही है ने अने परंपरा ने अपने हरते पासु लावी शक भाईन बोनो अपने देखो हो के पहले ना टाइम में गांव में तालाब नी सफाई हो कोई रास्तो बनाबो हो या कई स्कूल नी मरम्मत करवी हो या नारी नी सफाई करवी हो या कया व्यक्ति ने एने परिवार में घर बनाबन नी जरूरत हो तो हेत गांव ना मनकज हतो ई एकजुट थई नी ई काम करता हता आन में कोई मजदूरी नी मांग नतन रहती कोई लाभ हानि नो हिसाब नतन रहतो बस एक उद्देश्य रहतो तो काम नो काम है ने सबन नो काम है पण आपणे देखी रहो मनीषा के आज परंपरा है ई धीरे धीरे कमजोर थाती जई रही है आखिर आवु केम थई रू है ने आनु गांव माते ने समाज माते हु असर पड़ी रू है ने हरते आने आपणे फेर ते की जीवित करी शका।
0: होवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपणे भाई बोन कती घणा अक्कानी वाते थईगा अबर हमळा अगीत ने मोरे कर आपणी वाते।
1: होवे तो भाई बोनो आप हमळ तरेजू आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: தருமான்.
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।